0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। श्री मोदी की ये 2 दिन की यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा के आदान प्रदान तथा नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित 3रे भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार में आरक्षण के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की 66 श्रेणियों को अधिसूचित किया है। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग ए का 10% और अन्य पिछड़ा वर्ग बी का 7% आरक्षण रद्द कर दिया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजी कर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर कल सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में 1 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि श्री रूबियो कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली की यात्रा करेंगे। नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने बताया कि श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। क्वाड समूह में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका शामिल हैं। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया गया है। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। संग्रहालय का ये 3रा AI संचालित इंटरैक्टिव होलोबॉक्स होगा। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना बनी हुई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रन बनाए। जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 5 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के

विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

अवतारे हाथे भक्त गाय के

0: जवानी रुबाब नखरा हाय हाय हाय हाय ए रूप जवानी रुबाब नखरा किती मिघाना गाव
1: पर कान काता लगट कराया जवळ कशाला
0: जरा थांब
1: नग नग नग नग नग
2: काटा काटा सरसर काटा सरसर काटा

0: नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री

0: जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1.6% की वृद्धि होगी। नागर विमानन महानिदेशालय ने इस वर्ष के शुरू में तकनीकी गड़बड़ी के बाद एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की आगे की जांच के आदेश दिए। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इटली से हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी इटली की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर कल रात रोम पहुंचे। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। अनंतारा प्लाजो नायदी होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी गर्मजोशी से समुदाय के सदस्यों से हाथ मिलाया। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के संयुक्त लेख में दोनों नेताओं ने कहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया है।
2: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: नॉर्वे की 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: ओस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गुड़बोले, आकाशवाणी न्यूज ओस्लो, नॉर्वे।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जिनेवा में 19वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और वैश्विक स्वास्थ्य एकजुटता के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वैश्विक स्वास्थ्य का पुनर्निर्माण एक साझा दायित्व विषय पर आयोजित सभा में श्री नड्डा ने संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण पर आधारित सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में भारत की प्रगति का उल्लेख किया।
4: इंडिया इज एक्सेलरेटिंग टुवर्ड्स यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज।
5: भारत गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य

0: सेवा तक पहुंच का विस्तार करके सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए हमने 185,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए हैं। इसके अलावा हम महामारी की तैयारियों और आपातकालीन राहत के लिए मजबूत और सुदृढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध
1: है।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की यह योजना 1 जून से प्रभावी होगी। एक रिपोर्ट।
0: इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं आयकर का भुगतान नहीं करती हों और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत न हो। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
2: एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को ये जानकारी दी।
5: मैं जो इनपुट मिला है उसमें हमने और कहा इसको और इम्प्रूव करो और एक रोल मॉडल के रूप में हम पूरे देश में सारे सरकार को हम भेजेंगे, भाई इस रूप में आप हमें अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करके दो। जैसे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट करे, इंडस्ट्रीज में क्या लॉस होता है, प्रोडक्शन का कितना लॉस होता है, लेबर एक तरह से दूसरी तरह माइग्रेट करती है, सबको कहा अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करें और उसका संकलन करके आगे दे सके।
2: नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच मूल उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान का संचालन इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए उड़ान AIC-132 संचालित करने के बाद रोक दिया गया था। एक रिपोर्ट।
6: यह कार्रवाई पायलट डिफेक्ट रिपोर्ट में दर्ज एक प्रविष्टि के बाद की गई थी। इसमें कहा गया था कि बायां ईंधन नियंत्रण स्विच थोड़ा सा दबाने पर रन से कट ऑफ स्थिति में फिसल जाता है और चयनित स्थिति में ठीक से लॉक नहीं होता है। महानिदेशालय ने कहा कि एयर इंडिया ने मूल उपकरण निर्माता की निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार और महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में ईंधन नियंत्रण स्विच का निरीक्षण और कार्यात्मक परीक्षण किया। निरीक्षण परिणामों और उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा के बाद निष्कर्ष निकाला गया कि ईंधन नियंत्रण स्विच यांत्रिक रूप से डिजाइन के अनुसार कार्य कर रहा था और इकाई को सेवा योग्य घोषित किया। हालांकि महानिदेशालय ने निगरानी के अंतर्गत निर्देश दिया है कि ईंधन नियंत्रण स्विचों का भविष्य में निरीक्षण किया जाए। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
2: भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
1: आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना भी बनी हुई है। राजस्थान रॉयल्स ने 221 रन का लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। वरिष्ठ भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने भारतीय हॉकी खिलाड़ियों के फिटनेस स्तर की सराहना करते हुए इसे खेल के लिए समर्पण की पहचान बताया है। कोहली ने कहा कि क्रिकेटरों की फिटनेस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की फिटनेस के 15% के बराबर भी नहीं है। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय दल की पहली सूची की घोषणा कर दी गई है। यह प्रतियोगिता इस महीने की 25 तारीख से 6 जून तक गोवा में आयोजित की जा रही है। उधर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर 3 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आया था। अंकित ने राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 3रा स्थान जबकि पाटिल ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। दोनों खिलाड़ियों ने आरोपों को स्वीकार कर लिया जिसके परिणाम स्वरूप उनकी अयोग्यता अवधि में 1 वर्ष की कमी हुई है।
2: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में बढ़ता तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। एक रिपोर्ट।
7: राज्य के बुंदेलखंड इलाके का बांदा जिला लगातार 3रे दिन भी देश का सबसे गर्म क्षेत्र बना हुआ है, जहां अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राज्य के अन्य हिस्सों में भी भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली है और कई स्थानों पर दिन का अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है और रात के समय भी तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। पारा बढ़ने से आम जनजीवन पर तो असर पड़ा ही है, पशु पक्षी भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
2: मध्य प्रदेश भी भीषण गर्मी की चपेट में है। राज्य में पहली बार पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
8: धन्यवाद विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा लोकसत्य सहित कई अखबारों में है। भारत नॉर्वे के बीच अंतरिक्ष, हेल्थ, डिजिटल क्षेत्रों सहित 12 समझौते। भारत नॉर्डिक समिट में पीएम मोदी के शब्द, नवभारत टाइम्स में है। आतंकवाद पर हो एक रुख, कोई समझौता नहीं, कोई दोहरा मापदंड नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की इटली यात्रा पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों का साझा लेख, दैनिक जागरण में है। रणनीतिक साझेदारी के युग में भारत और इटली शीर्षक से छपे लेख के अनुसार भारत का तेजी से बढ़ता नवाचार तंत्र और कुशल पेशेवरों की बड़ी संख्या तथा इटली की उन्नत औद्योगिक क्षमता दोनों देशों के सहयोग को स्वाभाविक और रणनीतिक सहयोगी बनाती है। आवारा कुत्तों पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सभी अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, खूंखार कुत्तों को सजाए मौत। शीर्ष न्यायालय ने कहा, बच्चों और बुजुर्गों के जीवन को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकते। राजस्थान पत्रिका ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को दिया है, भयमुक्त जीवन लोगों का अधिकार। नक्सलवाद की तरह 3 वर्ष में हर केस खत्म करने का लक्ष्य, गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान दैनिक भास्कर में है।
2: धन्यवाद आकर्षिता। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. two leaders to discuss ways to boost cooperation on India-Middle East-Europe Economic Corridor and review Joint Strategic Action Plan 2025-2029. West Bengal government to roll out Annapurna scheme providing 3,000 rupees per month to women aged 25 to 60 years from June 1st. Joint Parliamentary Committee on One Nation, One Election says simultaneous Lok Sabha and Assembly

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: नमस्कार, हेलो, गुड मॉर्निंग. आप सभी का स्वागत है आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो चैनल पर. सुबह सुबह रोशनी आकाशवाणी के FM रेनबो के स्टूडियोज में आ गई है और शुरू हो गया है कार्यक्रम मस्त मुंबई. सो अभी से लेकर ठीक 11 बजे तक आपके साथ रहूंगी. बुधवार है तो मस्त मुंबई में होती है मुंबई वालों की बातें, मुंबई कर की बातें और मुंबई कर की जो लाइफ लाइन है उसमें क्या कुछ हो रहा है, कुछ हो गया है, कुछ होने वाला है, वो सारी बातें होने वाली है ठीक 10 बजे तक. और 10 बजे के बाद जो बच्चे कंपनी है उनकी दुनिया में भी थोड़ा झांक लेते हैं. तो ये सब कुछ अगर आपको भी जानना है, आपको भी कुछ कहना है तो सुनते रहो 107.1.

0: नंबर 420.
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस. राइट, मैं दुनिया पे अकेला हूँ.
1: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनिया इज जक्सटापोजिशन्ड बाय द हेमोग्लोबिन ऑफ द एटमोस्फेरिक प्रेशर इन द कंट्री.

0: रिस्पांस डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित।
1: इंटरनेट बैंकिंग,
0: मोबाइल बैंकिंग,
1: व्हाट्सएप बैंकिंग,
0: ईकेवाईसी,
1: एनईएफटी, आरटीजीएस,
0: आईएमपीएस,
1: कॉस्मोस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
0: यूपीआई जैसे कई सारी डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

नजर यहीं पर है आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो चैनल पर। सुबह हमारी मुलाकात हुई है, मुंबई से जुड़ी बातें तो हम करने ही वाले हैं। और जब बस इतना ही कह दिया, हमारे जो लिसनर हैं प्रणव शिंदे, उन्होंने मुंबई के बारे में कुछ कहा है, तो उनका कहना है मुंबई सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि लाखों दिलों की धड़कन और सपनों का समंदर है। इस शहर की भाग दौड़, मरीन ड्राइव का सुकून भरी शामें और समंदर की लहरें हर किसी को अपना दीवाना बना लेती है। मुंबई की इसी खूबसूरती रफ्तार और जज्बे को बयां करती है। क्या बात है, मुंबई की हर एक बात ही निराली है, बहुत कुछ यहाँ पर चलता है। और वाकई हर किसी का कहना है कि एक बार कोई अगर मुंबई आ जाता है, फिर दुनिया का कोई भी कोना, कोई भी हिस्सा, कोई भी शहर उसके उतना खास नहीं लगता। तो मुंबई शहर और मुंबई की जो लाइफ लाइन है, सबसे ज़्यादा हम आज के कार्यक्रम में उससे जुड़ी बातें करेंगे। और उसी के साथ पंकज महौर जो हमारे लिसनर है, वो आज भी आज मुलाकात हो रही है, बावजूद पिछले बार जब हम मिले थे हमने फिल्मों से जुड़ी बातें की थी, एक छोटे से गांव घूम कर आए थे, तो दिल तो पागल है के बारे में हमने बातें की थी, उनको वो बातें आज भी याद आ रही है और बहुत उन्होंने तारीफ की है, तो बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। तो पिछली बार की बातें अगर पसंद आई है तो आप अभी भी बने रहो, क्योंकि नई बातें होने वाली है और मैं तो अपनी तरफ से बातें करूँगी, लेकिन आपका साथ और आपकी बातें भी जानने के लिए मैं यहीं पर हूँ। तो बने रहो ओनली ऑन 107.1।

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: ज्यादा वफादार है। खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

मोबाइल ऐप यानी जानकारियों को आपके पास पहुंचाने का आधुनिक माध्यम ऐप रेडियो, जब ये दोनों एक होते हैं तो जाहिर है दुनिया और करीब आ जाती है। आकाशवाणी मुंबई की संवाददाता चैनल और अस्मिता चैनल वर्षों से अपने श्रोताओं के लिए मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, कोंकणी, गुजराती, उर्दू, सिंधी और कन्नड़ भाषा में कार्यक्रमों को प्रसारित करते आ रहे हैं। अब ऐप न्यूज ऑन एयर के डाउनलोड के जरिए आप संवाददाता अस्मिता, एफएम रेनबो और एफएम गोल्ड के जीवंत कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं। तो डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन एयर और जुड़िए, संवाद कीजिए आकाशवाणी मुंबई के चारों चैनलों से।

और इसी के साथ मस्त मुंबई कार्यक्रम का पहला हिस्सा है जो यहीं पर पूरा होता है। 9 बजे हम मिलेंगे एक खास कार्यक्रम के साथ, क्या है तो उसके लिए बस बने रहो 107.1 पर। मैं हूँ रोशनी, और क्या होने वाला है बस थोड़े से वक्त के बाद मैं आपको ज़रूर बताती हूँ।

0: आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो चैनल पर अब हमने सुना खास कार्यक्रम दागिना सोनाचा असो व हिऱ्यांचा दागिना म्हणजे पूना गाडगिळ आणि सन्स इस कार्यक्रम का पहला एपिसोड और इसी के तुरंत बाद एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है तो ब्रेक पर जाने के बाद फिर एक बार यहीं पर मुलाकात होगी 107.1 पर।
1: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
2: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू
1: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध शर्तें लागू
2: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक।

मुंबई के मतवाले राही, पता है बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है, बहुत सारे ब्रेक्स, बहुत ज़्यादा हॉल्ट आया है, लेकिन अब बातें जो शुरू हो गई है और मुंबई की जो हमारी लाइफलाइन है, इसमें हम सभी ने जो है सफ़र कभी ना कभी किया है और हमें पता है कि जो ट्रैवल करते हैं लोग, उनमें भी विभिन्न प्रकार के यात्री होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्होंने 10-15 साल से सफ़र किया है इसी लोकल ट्रेन से, बावजूद हर रोज़ बहुत डरते डरते जो है चढ़ते हैं, उतरते हैं, ट्रैवल करते हैं, और कुछ मुंबई कर होने के बावजूद ऐसे हैं जो लोकल से थोड़ा कम ही रब्ता चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन्हें लोकल ट्रेन के लेजेंड्स हम कह सकते हैं, क्योंकि किस तरह ट्रेन में चढ़ना है, कब चढ़ना है, किस तरफ से ट्रेन के लिए जो है वहाँ से ट्रेन पकड़नी है, चढ़ने के बाद बैग का जो है बंदोबस्त किस तरह करना है, सीट के लिए क्या क्या करना है, छोटी सी बड़ी बात हर चीज़ का जो है उपाय उनके पास है, या फिर जैसे हम हमारी मुंबई की भाषा में कहते हैं, जुगाड़ इनके पास तैयार होता है, और इन्हीं को हम कहेंगे द लेजेंड्स ऑफ मुंबई लोकल। तो ये बिल्कुल भटके हुए नहीं है, इनको सब कुछ बहुत अच्छे से पता है।

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू, आज ही संपर्क करें।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ। कागज

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: लेजेंड्स ऑफ मुंबई लोकल कौन है? अब वो ये भी ऐसे लोग हैं जो ट्रेन में चढ़ते उतरते वक्त घबराते बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल इन्होंने इस चीज़ को अपनी दिनचर्या का एक एडवेंचर बना लिया है। और जैसे लोग कहते हैं ना, दे लुक फॉरवर्ड टू इट, वैसे उनके लिए ये बात हो गई है। बैग, सामान,

ट्रेन में कहाँ पर रखना है ये भी उन्हें पता है, और अगर मान लो ऊपर रैक पर जगह ना हो तो वो खुद ही घर से आते वक्त ही अपने साथ एक हुक लिए आते हैं और वहाँ पर जैसे तैसे ट्रेन में भी जगह करके वो अपना बैग उस हुक को लटकाते हैं। और फिर जो दूसरे लोग होते हैं उनको इन सारी चीज़ों के लिए बहुत अच्छे से गाइड भी करते हैं। तो ऐसे कई सारे लोग होते हैं जिन्हें बैग कहाँ पर

नई पड़ोसन फिल्म के इस गाने के बाद अब हम सुनेंगे एक ऐसा गाना, कौन सी फिल्म का है जानना है तो वो गाना है आंखें फिल्म से नितिन रायकर की आवाज, और ये गाना हम सुनेंगे आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो चैनल पर। कार्यक्रम चल रहा है मस्त मुंबई, और अगली आवाज नितिन रायकर की।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित, बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: आप सभी का फिर एक बार स्वागत है मस्त मुंबई कार्यक्रम मुंबई के मतवाले। राही, कैसे हो, क्या हाल है, सही से लोकल ट्रेन में चढ़ पाए हो या नहीं, सीट मिली या नहीं। और कुछ वक्त पहले हम यही बातें कर रहे थे कि कुछ लोग इतने परिपक्व हो गए होते हैं हर रोज़ लोकल ट्रेन में ट्रैवल करते करते कि सीट ना होने पर भी उन्होंने अपने आप के लिए एक उपाय ढूंढ निकाला है। जैसे 2024 में जनरल कंपार्टमेंट में से और 2026 इसी साल मार्च के महीने में लेडीज़ कंपार्टमेंट में दो ऐसे लोग वायरल हुए क्योंकि इन दोनों ने एक फोल्डिंग स्टूल जो है, जिसे आप कह सकते हैं कि उन्होंने अपने आप के लिए एक फोल्डिंग सीट बनाई, यानी न किसी से पूछताछ करो कि कहां पर उतरने वाला है, वाले हैं, कहां कब सीट मिलेगी, ना ही उस सीट के लिए झगड़ा करो। तो बड़ी होशियारी से और पीसफुल तरीके से उन्होंने सीट का एक बहुत ही अच्छा खासा जुगाड़ू उपाय अपने आप के लिए जो है खोज निकाला है। तो ऐसे भी लोग होते हैं, शायद इसीलिए ऐसे लोगों को जो है मुंबई के लेजेंड्स या फिर हमारे मुंबई लोकल के लेजेंड्स ऐसा कहते हैं। ऐसी और क्या क्या विशेषताएं होती है लेजेंड्स के जो मुंबई लोकल में ट्रैवल करते हैं, आपको पता है, ऐसी कुछ खास बातें आपको भी FM रेनबो के सभी लिसनर्स के साथ शेयर करनी है तो आप फ़ोन कॉल करके या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हो।

0: न भुलाए।
1: 1 मार्च को नजर मिलाई, 4 अप्रैल को मैं मिलने आई, 21 मई को तुमने छुआ था, 6 जून मुझे कुछ हुआ था।
2: लड़कों का क्या है, किसी भी मोड़ पे वो मुड़ जाए, अभी किसी के हैं, अभी किसी और से वो जुड़ जाए।
3: तुम्हारे मम्मी डैडी घर पर नहीं है? ग्रेट, मैं आ जाऊँ। तुम्हारी फ्रेंड अकेली घर जा रही है, बेचारी मैं छोड़ आऊँ?

0: क्या बात है यार,
1: पहले पहले भवरे जैसे पास पास मंडरा है,
0: बड़ा
1: फिर बिजी हूँ ये कहकर तुमको वो
0: टरका
1: समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम
0: मेरी
1: है
0: भी तो सुनो।
1: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है। जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो
0: जाए,
1: कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर मंडरा,
0: नॉट लिसनिंग,
1: सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं
0: चलती।
1: इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
0: ओके दैट्स इट।
2: What a fun track, हम तो फिल्म से ये गाना हमने सुना। और उसी दौरान दादर से बाबा मैसेज करके कहते हैं कि विराट ट्रेन से ना ही चढ़े तो बेहतर है, और ये बहुत सारे लोगों का कहना है। लेकिन जिस फोल्डिंग सीट के बारे में हम कुछ देर पहले बातें कर रहे थे, पढ़ने में ऐसा आया है वो दोनों जो वायरल पैसेंजर्स हैं वो दोनों की दोनों विरार के ही थे। चलो इसी बात पर एक गाना मेरी तरफ से आप सभी के लिए मुफ्त मुफ्त मुफ्त में।
3: जोड़ी है ये, जोड़ी है ये, अरे एक लो एक मुफ्त, अरे एक लो एक मुफ्त।

0: कॉस्मॉस डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित
1: इंटरनेट बैंकिंग,
0: मोबाइल बैंकिंग,
1: व्हाट्सएप बैंकिंग,
0: ईकेवाईसी,
1: एनईएफटी, आरटीजीएस,
0: आईएमपीएस,
1: कॉस्मॉस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
0: यूपीआई जैसे कई सारी डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मॉस बैंक में जरूर होना चाहिए।
1: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: तीन सहेलियां अपने मेडिटेशन कैंप से घर लौटने के लिए ट्रेन के लिए रुके थे। रात के 11 बजने ही वाले थे और ये तीनों मिडिल लेडीज फर्स्ट क्लास के पास खड़े थे और उन्होंने ये भी थोड़ी देर के बाद जान लिया कि उनके अलावा एक भी और फीमेल आसपास नहीं है। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आने वाली थी, आसपास खड़े पुरुष यात्रियों ने उन्हें बताया कि 11 बजे के बाद जो लेडीज फर्स्ट क्लास है, खासतौर पर मिडिल लेडीज फर्स्ट क्लास है, वो बन जाता है जनरल डिब्बा। और वो तीनों के तीनों सोचने लगे कि अब इतने सालों से हम लोकल ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, बावजूद हर बार कुछ नया इस ट्रेन के बारे में पता चलता ही रहता है। तो ऐसी और कौन कौन सी बातें हैं कि लोकल ट्रेन के बारे में आपको इतने साल बाद पता चली और ये लगा कि और कितना कुछ जानना है हमें हमारी ही लोकल ट्रेन के बारे में।

चल चल चल चल चल चल तुझे बठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बाटे। पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए और होश उड़ाए ओए।

मैंने लेडीज फर्स्ट क्लास जो है रात के 11 बजे से तड़के के 5 बजे तक जनरल डिब्बा हो जाता है और ये सेंट्रल वेस्टर्न हार्बर तीलो लाइन पर होता है। तो ये आपके लिए भी नई नई खबर है या आपको ये पहले से पता था? क्योंकि मुझे तो बस अभी अभी पता चला है।

एफएम रेनबो पर ये चल रहा है कि हम मुंबई के मतवाले राही बातें कर रहे हैं हमारी लोकल ट्रेनों के बारे में। और एक बार ऐसे हुआ कि एक मुंबईकर और एक नॉन मुंबईकर के बीच में बातें हो रही थी और मुंबईकर से एक सवाल पूछा गया कि आखिरी लास्ट लोकल जो है उसका सही वक्त क्या है। और उस वक्त मुंबईकर के पास सही जवाब नहीं था, उसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई और तुरंत सारी जानकारी ढूँढ ली और तब उसे ये पता चला कि वेस्टर्न और सेंट्रल लाइन पर जो आखिरी लोकल होती है वो रात के 1 बजे के करीब होती है और डाउन से तड़के 3:25 पर मुंबई के लिए ट्रेन रवाना होती है। तो कहने के लिए

आधी रात 2 और 4 के बीच सेवाएं बंद होती है, लेकिन सही से देखा जाए तो आखिरी लोकल जो है अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले ही दिन की पहली लोकल जो है मुंबई के लिए निकल पड़ती है। यानी मुंबई वाकई पूरी वक्त चलती रहती है, कभी भी सोती नहीं है। इसी नोट पर जो है आज का कार्यक्रम जो है मस्त मुंबई का यहीं पर पूरा होता है। लेकिन देखो, मुंबई की बातें पूरी हुई है आपकी, और मेरी बातें अभी भी जारी रहने वाली है। तो रोशनी आपको मिलेगी ठीक 10 बजे समाचारों के साथ। अभी के लिए एक बहुत ही प्यारा सा गाना, बहुत धमाकेदार मज़ेदार उषा उत्थप की आवाज़ ढोलफिन से।

0: Aswani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आकाशवाणी मुंबई के FM Rainbow चैनल पर। सुबह के ठीक 10 बज रहे हैं और अब जानते हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर कल रात रोम पहुंचे। इटली के विदेश मंत्री एंटोनिया ताजानी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। नई दिल्ली स्थित अमरीकी दूतावास ने बताया कि रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। महाराष्ट्र सरकार ने 6.5 लाख करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश वाली परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए प्रमुख कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल मुंबई स्थित राज्य सचिवालय में हस्ताक्षर समारोह की अध्यक्षता की। और समाचारों के अंत में अब जानते हैं, दुनिया के नंबर 2 टेनिस खिलाड़ी स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने आगामी विंबलडन 2026 से हटने का फैसला किया है। अल्कराज ने बताया कि वो कलाई की चोट से पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं, जिसके कारण वो घास के कोर्ट सीजन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। 23 वर्षीय अल्कराज इससे पहले फ्रेंच ओपन 2026 से भी हट चुके हैं, जहां वो गत चैंपियन थे। इसी के साथ समाचारों का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। आने वाले कार्यक्रम के लिए बने रहो आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो सेवा पर। दस बजकर 2 मिनट और FM रेनबो पर नमस्ते भारत कार्यक्रम शुरू हुआ है। और बुधवार के दिन जहां पर हम महिलाएं एवं बाल जगत के बारे में बातें करते हैं, मई का महीना है तो क्यों ना हमारे जो बाल दोस्त हैं उनके बारे में बातें करेंगे, क्योंकि ये जो चुटकन गैंग है फिलहाल बहुत ज़्यादा मौज मस्ती कर रहे हैं, तो उनकी मौज मस्ती में क्यों ना हम भी शामिल हो जाए। बातों के ज़रिए ही सही, लेकिन हमें भी वो थोड़ी सी सहूलियत लेने की हम कोशिश करते हैं। लेकिन जब भी छुट्टियां शुरू होती है, गर्मी की छुट्टियां खास तौर पर, तो सब कुछ आराम आराम से शुरू होता है। तो अभी बातें नहीं शुरू करते हैं, क्यों ना एक गाना सुन लेते हैं और गाने के बाद फिर कुछ बातें होंगी इन्हीं प्यारी छोटी सी चुटकू गैंग के बारे में।

आबरा फिल्म से गाना उदित नारायण और ऐसी ही बच्ची कंपनी की आवाजों में अभी हमने सुना नमस्ते भारत कार्यक्रम में। गर्मी की छुट्टियां है, उम्र चाहे जो भी हो, मई का महीना शुरू होते ही हम सभी मेंटली समर वेकेशन पर चले जाते हैं। मई 2026 जो है वो थोड़ा सा अलग लग रहा है, लग रहा है ना, क्योंकि देखो समर क्लासेस चल रहे हैं, हाँ वो तो ज़रूर चल रहे हैं, इंडोर आउटडोर खेल खेले जा रहे हैं वो भी चल रहा है, लेकिन ऐसा हो रहा है कि हीट वेव भी है और साथ ही पूरी दुनिया में जो माहौल है उसके चलते कई सारे घरों में लॉन्ग ट्रिप्स है या फिर इंटरनेशनल ट्रिप्स है उस पर थोड़ा सा परहेज कर लिया है। लेकिन अब कहीं लॉन्ग ट्रिप पर नहीं जा रहे हैं तो क्या हमारे आसपास ही वो नज़र आ रहे हैं? कुछ ऐसे हैं जिन्होंने सारे वेकेशंस कैंसिल कर अपने ही घर में कई सारे एक्टिविटीज़ करते हुए वो अपना समर वेकेशन बिता रहे हैं, लेकिन कईयों ने ये भी सोच लिया है कि फिर एक बार गर्मी की छुट्टियाँ यानी नानी का घर है।

सुनो, मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। कई साल पहले की ये बात है, भयानक अंधेरी सिया रात में लिए अपनी बंदूक मैं हाथ में,

0: जा रहा था? नहीं, आ रहा था। नहीं नहीं, जा रहा था।
1: उफ़, आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ बताता हूँ। नहीं भूलती उफ़ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय। घड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो छपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे, अरे बचाओ, अरे बचाओ। मैं डाल डाल, वो पास पास, मैं पसीना, वो दाद दाद, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ बचाओ, अरे भागो रे भागो, अरे भागो।
2: फिर क्या हुआ?
0: खुदा की कसम,

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
2: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू।
1: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध। शर्तें लागू।
2: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ।

0: क्या मस्ती होती है, क्या सवाल पूछे जाते हैं, और ये सब कुछ तभी होता है जब हम आराम से बैठे हुए होते हैं, कुछ नहीं होता है करने को, तब अचानक से कुछ सवाल मन में आ जाते हैं, कुछ सूझने लगता है, कुछ समझने लगता है। लेकिन हर वक्त किसी ना किसी शेड्यूल में हम फंसे हुए होते हैं तो कुछ और समझ नहीं आता। अब अगर 70s, 80s, 90s की गर्मियों की छुट्टियों के बारे में बात करें तो उस दौरान ऐसे ही होता था कि छुट्टियों के वक्त कोई भी शेड्यूल नहीं होता था, दिन भर बस खेलते ही रहते थे और खेल के साथ ही दिन की शुरुआत होती थी और आंगन में तारों को ताकते हुए, कहानियां सुनते हुए सो भी जाते थे। पड़ोसी और कजिन्स हैं, उन्हीं के साथ खेलते थे और खेलते खेलते ही जिंदगी भर के लिए जितनी भी ज़रूरी स्किल्स है उसी खेल में हमने सीख ली। अब खेलते हुए ये सारी चीज़ें जान ली और इतना वक्त उनके साथ बिताया है और इतना खास वक्त बिताया है कि भले आज वही दोस्त, वही कजिन्स दुनिया के दूसरे कोने में है, लेकिन जो हमारा बॉन्ड है वो बहुत ही ज़्यादा अनमोल है। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो इस तरह से हमने गर्मी की छुट्टियां जो है बिताई है, खेलते खेलते ये सब कुछ हो गया और फिर जब माँ, मासी, चाची इन सबको गर्मियों के दिनों में अचार पापड़ बनाने में मदद की तो जिम्मेदारियों का एहसास बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए अपने आप उन्हीं छोटे छोटे काम से जो है हमें उसका एहसास हुआ। तो बचपन में शायद उन दिनों कुछ खास कोर्स नहीं किया था, ना कोई कैंप गए थे, लेकिन बहुत सारी स्किल्स हैं ऐसे ही खेलते कूदते हुए जो है तभी के लोगों ने और तभी के बच्चों ने सीख ली।
1: अटकन बटकन दही चटोकन मुसुआ मोटा रुपया खोटा माला टूटी बेबी छोटी।
2: मम्मी कुछ भी।

对。

बाल जगत में क्या हो रहा है, तो फिलहाल छुट्टियां चल रही है और जब उनकी छुट्टियों के बारे में बात की, कई सारे लिसनर जैसे कि शुभदा भी है, उनका कहना है कि उन्हें उनके बचपन के छुट्टियों के दिन याद आ गए। तो क्यों ना बातों के जरिए उन्हीं दिनों में फिर एक बार जो है खो जाते हैं, वही गर्मी के छुट्टियों के दिन, गर्मी की छुट्टी के दिन, आज़ादी वाले दिन, न पढ़ाई की टेंशन, हर पल रिलैक्सेशन, नाना नानी का होना मानो पिकनिक का ही होना, न पापा की डांट न होमवर्क का झाम, गर्मी की छुट्टी है हर चीज का वाम, किताबों का बैंक 2 महीने रहेगा बंद, किताबों का बैंक 2 महीने रहेगा बंद, दोस्तों संग क्रिकेट, गर्मी की छुट्टी का यही है सीक्रेट, मोहल्ले में है शोर, बच्चों का है जोर, गर्मी की छुट्टी के दिन बड़े प्यारे दिन, मौज मस्ती वाले दिन, मौज मस्ती वाले दिन।

0: बच्चों की जब वेकेशंस देखते हैं और उस दौरान का उनका शेड्यूल देखते हैं तो ऐसा कई बार लगता है कि स्कूल के दिनों से भी ज़्यादा टाइट शेड्यूल इनका छुट्टियों में होता है। सारे हॉबीज और स्किल्स जो है ये लोग भी सीखते हैं, पहले भी सीखे जाते थे, लेकिन किसी कोर्स या फिर कैंप का वो हिस्सा नहीं बनते थे। बस जिंदगी जीते जीते खेलते कूदते सब कुछ सीख लिया जाता था, लेकिन अब ऐसे हो रहा है, खास कोर्सेस और कैंप्स और क्लासेस लगाई जा रही है, प्रोफेशनल से सीख रहे हैं, तो इनका तरीका थोड़ा सा अलग है। अब खेल कूद के बाद क्या करें, पूरे दिन सुबह से लेकर शाम रात होती थी तब भी घर के अंदर कदम नहीं आते थे, लेकिन अब ऐसा कह भी नहीं सकते क्योंकि बाहर धूप ही इतनी ज़्यादा है। और अब ये होता है कि आजकल जैसे ही छुट्टियाँ शुरू हो जाती है उसके ही पहले तय किया जाता है कि इस साल कौन से एग्जॉटिक लोकेशन पर घूमने जाना है, और इन सब के बीच जब थोड़ा बहुत वक्त मिल जाता है तब कुछ दिनों के लिए एक छोटा सा ट्रिप हो जाता है फिर वो नानी के घर के लिए। लेकिन सारी चीज़ें की जा रही है, अंदाज थोड़ा सा बदल गया है।
1: पासपोर्ट रेडी है, वीजा लग गया, प्लेन खड़ा एयरपोर्ट पे, मैं चली तनु छड़के छड़के।

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
1: कॉस्मो।

खूबसूरत दिन जिसे हम कहते हैं गर्मियों के दिन, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां जो होती है, गर्मी की छुट्टियां वो गर्मियों के साथ साथ आ जाती है, तो वही एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन होता है। पहले के दिनों में क्या होता था, आज कल क्या चल रहा है, ये सब कुछ हमने देख लिया है, देख रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों से ये समझ तो आ रहा है पहले और आज में बहुत सारी एक जैसी बातें भी हैं, लेकिन फ़र्क इतना है कि अब वक्त बदल गया है, ज़माना बदल गया है, और उसी के साथ साथ वो सारी चीज़ें करने का अंदाज़ है उसमें भी बदलाव आया है। इतने सारे सोर्सेस हैं, रिसोर्सेस हैं, तो वक्त के साथ अब उन्हीं की मदद ली जा रही है और उसमें कोई भी हर्ज नहीं है। कल और आज दोनों ही अपने अपने तौर पर बढ़िया है, और बस वक्त वक्त की बात है, जब जहाँ पर जैसे चल रहा है उसे एंजॉय करना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। स्कूल के दिनों में पढ़ाई को एंजॉय करो, और छुट्टियों में जो खाली वक्त है, आराम चल रहा है, उसे दिल से करना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और थोड़ी सी बात करनी है, लेकिन मैं अब एक म्यूज़िकल ब्रेक लेती हूँ, और ब्रेक के बाद आखिरी बात करने के लिए फिर आपको मिलने आ रही हूँ यहीं पर। आप भी मत जाना, बने रहो ओनली ऑन FM रेनबो।

गर्मी की छुट्टियों को नहीं, लेकिन कुछ लिसनर्स ने पहचान लिया है, अब मुझे यानी रोशनी को टाटा गुड बाय कहने का वक्त आ गया है। तो गुड बाय बस एक अलग नोट पर, एक कुछ खास बात कहकर करने वाली हूँ, और ये गर्मी से जुड़ी ही बात है कि आया है गर्मी का मौसम, कहाँ भाग कर जाओगे। आया है गर्मी का मौसम, कहाँ भाग कर जाओगे, सब मिलके अब पेड़ लगाओ, गर्मी से ठंडक तुम पाओगे। तो गर्मी से ठंडक पानी है, तो बारिश के मौसम में इस साल क्या करना है ये हमें पहले से ही

पता चल गया है, तो तैयारी अभी से ही हम कर लेते हैं। और तैयारी के लिए मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, तो आपको बहुत ही प्यारे नोट के साथ और बहुत ही ज़्यादा प्यार के साथ मैं आपको आज अलविदा कह रही हूँ। कोई तो इंतज़ार कर रहा है आपका, कौन होने वाला है 11 बजे से जानना है, तो बने रहो, सुनते रहो 107.1 आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: 11:17 हो चुके हैं और आइए इस घंटे के मुख्य समाचारों पर एक नजर डालें। अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाते हुए प्रतिबंधों की घोषणा की है। ताजा कार्रवाई में एक विदेशी मुद्रा विनिमय कंपनी, उससे जुड़े कारोबारी नेटवर्क और कई जहाजों को निशाना बनाया गया है। अमरीकी प्रशासन का आरोप है कि इन माध्यमों का इस्तेमाल ईरान अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय और तेल कारोबार को जारी रखने के लिए कर रहा था। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में सीबीआई ने वाराणसी से एक और आरोपित को गिरफ्तार किया है। ये चंद्रनाथ रथ

की हत्या से जुड़े मामले में पांचवी गिरफ्तारी है। सीबीआई ने आरोपित को वाराणसी की स्थानीय अदालत में पेश किया, जहां से दो दिन की ट्रांजिट रिमांड हासिल कर उसे आगे की पूछताछ के लिए कोलकाता लाया गया। मुख्य समाचारों में आगे, अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद के जीवन गौरव पुरस्कार के लिए मराठी अभिनेता दिलीप प्रभावळकर और स्वाति चिटनिस का नाम इनकी घोषणा हुई है। माटुंगा के यशवंत नाट्य मंदिर में 14 जून को पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया जाएगा। नाटककार गोविंद बल्लाल देवल की स्मृति प्रत्यर्थ हर साल ये पुरस्कार दिया जाता है। अरुणाचल प्रदेश की ताइक्वांडो स्टार रूपा बायर ने 2026 एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए योग्यता हासिल कर ली है, जो राज्य और राष्ट्र दोनों के लिए एक गौरवपूर्ण उपलब्धि है। उनकी इस उपलब्धि को भारतीय ताइक्वांडो के लिए एक ऐतिहासिक क्षण माना जा रहा है। इसी के साथ इस घंटे के मुख्य समाचार समाप्त होते हैं। ब्रेक फ्री के लिए बने रहें 107.1 FM रेनबो पर।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं। दोस्तों, हम अक्सर कहानियों में पढ़ते हैं, फिल्मों और टीवी सीरियल्स में देखते भी हैं कि किस तरह एक किरदार को बहकाया जाता है, उसे गलत जानकारी देकर कोई ऐसा काम करने के लिए उत्तेजित किया जाता है जो उसकी इच्छा होती ही नहीं है, पर देखो उसको जरिया बनाकर कोई इस्तेमाल करना चाहता है। अब ये सब कहानी का प्लॉट नहीं है, ये होता है एक्चुअली असलियत में भी। हाँ, और तब हम सोचते हैं जब ऐसा कहीं देखते हैं पढ़ते हैं पहले एक्चुअली कि भाई इतना मूर्ख या कच्चे कान का कैसा हो सकता है कोई इंसान। हाँ, ये तो हमने झट से पकड़ लिया और ऐसा वैसा फलाना, ये सारी चीज़ें सोचते हैं। पर देखिए, ऐसी स्थितियाँ जो हैं उन्हें निर्माण भी तो किया जाता है, और यही चीज़ काफ़ी लोग साथ होती है। ये हमें पता चलता है जब असलियत में कहानियां बाहर निकलती है। मुझे लगता है ना दोस्तों कि इन सारी चीजों के लिए जब हम सोचते हैं अरे कौन जिम्मेदार है, यानी कि चलो आपको जिसने बेवकूफ बनाना था या अपने काम के लिए अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करना था उसने तो अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन आप कैसे फंसे, है ना, ये हम सोचते हैं अक्सर। और जब बात आती है जिम्मेदारी की, मुझे लगता है कि कम से कम सामने वाले जितना ही जिम्मेदार या दोषी होता है वो जो बहकावे में आ जाता है, क्योंकि हम कमजोर होते हैं, मुझे ऐसा लगता है जो बहक जाता है वो कमजोर होता है। और देखो, इसलिए मुझे लगता है वो काफी हद तक जिम्मेदार है, पूरी तरह भी जिम्मेदार है। अब ये कमजोरी जो है वो कैसी है, और भाई ये कमजोरी और क्या क्या करवा सकती है, क्यों ऐसा होता है, इन सब के बारे में बात करेंगे आज ब्रेक फ्री में आप सभी के साथ 107.1 FM रेनबो पर। मैं हूं वैशाली, मेरे साथ बने रहें, सुनते रहें, जिंदगी को एंजॉय करते रहें। और जिंदगी को एंजॉय करने का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि बस हम धमाका कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। जिंदगी को एंजॉय करना, जिंदगी का लुत्फ उठाना, उसका मतलब ये भी होता है ना कि एक साफ सुथरी जिंदगी जीना और किसी प्रॉब्लम में ना पड़ना, किसी ट्रैप में ना फंसना। जिंदगी वही दो पल की है, वाकई इसे एंजॉय करो, पूरी तरह से जियो। मैं हूं वैशाली, आप सभी के साथ रहूंगी दोपहर के 2 बजे तक।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कॉस्मोस डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित।
2: इंटरनेट बैंकिंग,
1: मोबाइल बैंकिंग,
2: व्हाट्सएप बैंकिंग,
1: ईकेवाईसी,
2: एनईएफटी, आरटीजीएस,
1: आईएमपीएस,
2: कॉस्मोस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
1: यूपीआई जैसे कई सारी डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए।
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

मैं हूँ वैशाली और ब्रेक फ्री चल रहा है। कई सारी चीजें होती है दोस्तों जिनसे जीवन में ब्रेक फ्री करना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है हमारी खुशहाली के लिए कि दूसरों के बनाए गए रचाए गए ट्रैप से बचकर रहना। वो किसी भी तरह का ट्रैप ही क्यों ना हो, और ऐसा भी होता है कि अक्सर जो लोग खुद कोई काम नहीं करना चाहते वो दूसरों से करवाते हैं, तो ट्रैप कर सकते हैं। अब देखिए, कुछ चीजें हो सकती है जो ज्यादा हानिकारक ना हो, लेकिन कुछ और चीजें भाई बहुत बड़ी और भयानक भी तो हो सकती है। कुछ देर पहले मैंने आप सबको एक छोटा सा यानी कहानी का प्लॉट मैंने साझा किया था, ये आपके साथ शेयर किया था, और हमें कोई भी आपत्ति ना होने के बावजूद, हमारा कोई रोल चीजों में ना होने के बावजूद, जब कोई हमसे अपना काम करवा लेता है तो वो यकीनन हमारी ही कमजोरी होती है। ये इसी कमजोरी के बारे में मैं आप सभी से बात करने वाली थी। और भाई वो यूं कि पहली बात तो ये है कि हम भ्रमित किए जाने के लिए सामने वाले से आइडेंटिफाई हुए, इसका मतलब कि हमने ऐसा कोई इंप्रेशन दिया है, कोई तो काम किया है या कुछ तो हमने दिखाया है, जिसकी वजह से सामने वाला हमको बहकाया जाने वाला इंसान समझता है, यानी वो आइडेंटिफाई करता है ना एक कि भाई ये है, ये जरा कमजोर है, हैं? इसको हम बहका सकते हैं। अब आगे और कारण भी बताऊंगी आप सभी को, आपको पर एक और एग्जांपल देने के बाद कि क्या चीजें होती है। अब ये जो होते हैं ट्रैप जिसमें अनगिनत लोग, चाहे कुछ मासूम भी हो सकते हैं और कुछ ऐसा भी हो सकता है ना कि धीरे धीरे भड़काने के बहकाने की वजह से उनकी मति भ्रमित और भ्रष्ट हो जाए, और ये जो है बहुत ही छोटी मोटी चीजों से शुरू होकर बड़ी चीजों तक भी पहुंच सकती है। हम जो टीवी सीरियल्स में देखते हैं

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
2: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू।
1: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध, शर्तें लागू।
2: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ।

ब्रेक फ्री चल रहा है 107.1 एफएम रेनबो पर। मैं हूं वैशाली और आप सभी साथ रहूंगी दोपहर के 2 बजे तक। दोस्तों, मैं आप सभी से बात कर रही थी उस ट्रैप के बारे में जिसमें अक्सर जाने अनजाने हम फंस जाते हैं। अब भाई, और इसमें मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारी भी उतनी ही गलती होती है जितने के सामने वाले की, जो हमें बहलाता फुसलाता या बहकाता है। और उसकी वजह मैं आपको बता रही थी, एक तो उसने हमें आइडेंटिफाई किया अपने काम के लिए, ये एक चीज। अब आगे की चीजें बताऊं उससे पहले एक उदाहरण आपको देना था कि देखिए, अब ये खबरें हम लोग कई सारे पढ़ते हैं, अब उसमें पूरे का पूरा वो सच है नहीं है ये हम पुख्ता रूप से कह पाए ना कह पाए, ऐसा होता है। लेकिन एक ऐसी खबर जो है ये मैंने पढ़ी है, और इसका मैंने क्यों जिक्र किया है ये भी आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। पहले तो बहुत ही मासूम सी लगने वाली चीज़ें, यानी कहानियों में ऐसे किरदार जो किसी और से बहकाए जाते हैं और बताए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं कुछ गलत करने के लिए, अपना जो काम है जो हम खुद अपने हाथ नहीं मैला करना चाहते वो करवाने के लिए, वो तो एक ठीक ठाक है, हम इसे सह सकते हैं, हम इसे मैनेज कर सकते हैं। लेकिन देखिए, हाल ही में मैंने एक खबर पढ़ी और वो ऐसी थी कि एक घुसपैठिया जो है एक देश में नुकसान करने के इरादे से और तबाही मचाने के लिए आ पहुंचा था, पर वहां जाने के बाद जब उसने देखा कि वहां पर कोई गड़बड़ नहीं है और जो उन्हें ट्रेनिंग कैंप्स में बताया जा रहा था ना उस देश के बारे में, वैसे कोई चीज उसको मिली नहीं वहां, और ना वहां अशांति थी, ना झगड़े फसाद थे, और ना ही किसी को शोषित किया जा रहा था उस तरह से, यानी कि टारगेटेड वे में। तो जीवन सामान्य था, शांतिपूर्ण था, सब कुछ अच्छा था। और वो जो है अपने काम को अंजाम देने के लिए जब इंतजार में था, तब धीरे धीरे उसका मन बदलने लगा और वो समझने लगा कि भाई, ये देश और इस देश के वासी तो बड़े अच्छे लोग हैं और बहुत सभी बहुत प्यार से अच्छे से रहते हैं। अब ये बात तो तय है कि

ऐसा कोई भी इंसान अगर किसी भी देश में घुसा तो उसे यकीनन पकड़ लेना चाहिए और उसकी जांच होनी चाहिए कड़ी सी। और यही हुआ, वो पकड़ा गया और उसकी कड़ी जांच हुई। पर मैं आपका ध्यान किसी और बात पर लाना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि घुसपैठिया के अनुसार वो अपना असली मकसद जो था उसका भूल कर क्या किया होगा उसने। उसे लगता था कि हेयर ट्रांसप्लांट बहुत महंगा होता है और बचपन ही से हेयर लॉस के कारण वो बड़ा परेशान था, तो उसने अपने ऑब्जेक्टिव्स को छोड़कर जो सारे गलत काम करने वो आया था उसका मन बदलने लगा और उसने हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया। सोचिए, और उसने ये सोचा था कि ये सारी चीजें करके भाई चुपचाप कुछ समय बिताकर फिर वो ये देश छोड़ देने के चक्कर में था, कहीं और जाकर बसने के चक्कर में था। अब देखो, वो जो कुछ भी बुरा काम करने गया था उस देश, वो तो गलत ही था। वो पकड़ा भी गया और आगे जांच भी हुई। लेकिन देखो, बात ऐसी है ना हैरानी की कि उसने आइडेंटिफाई किया कि उसका हमेशा से प्रॉब्लम क्या था। अब इस अच्छी जगह आ जाने की वजह से, इस अच्छे देश में आ जाने की वजह से वापस से फोकस जो उसकी रियल प्रॉब्लम थी उस पर आ गई थी। और उसने जो ये मसला था कि उसके बाल झड़ गए थे तो वो उसने हेयर ट्रांसप्लांट करा। अब लगने के लिए तो बड़ी कॉमेडी सी चीज है ये, लेकिन सोचो एक आदमी किस मंशा से आया था, क्या सारे उसके प्लान्स थे, क्या कुछ खतरनाक गजब वो कर देता, लेकिन उसका मन बदला। चलो अगर ये सच भी नहीं हो तो भी सोचिए ना, मैं आपका ध्यान इस तरफ खींचना चाहती हूँ कि वो भी जो है अपनी लाइफ में खुद का कुछ अच्छा करना चाहता था और उसे किसी और ने या कुछ लोगों ने बहला फुसला कर, बहका कर, गलत सलत चीजें उसके दिमाग में भर कर उसे भटका दिया जीवन में। अब सोचिए, ये हुई बहुत खतरनाक चीज और बहुत सादी सी चीज जो हम कहानियों में पढ़ते हैं, जो सास बहू के झगड़े या ऐसी घरेलू चीजें होती है, ये बहुत साधारण वाली है। और जो अगर वो खतरनाक रूप ले ले तो देखिए ऐसे घुसपैठिए वाली बात हो जाती है। पर इन सभी में हमें जो ध्यान देना है जिस बात पर, वो ये है कि भाई कोई आपको बहका कर आपसे खतरनाक चीज करवा सकता है और ये ट्रैप होता है, इससे बचना दोस्तों बड़ा ही जरूरी होता है ना। आप सभी समझदार है तो मैं आप सभी को बस ये एक रेंज बताना चाहती थी और यही मेरा उद्देश्य था। आप सभी बने रहे ब्रेक फ्री पर, और भी बातें होने वाली है 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित, बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

ब्रेक फ्री चल रहा है 107.1 FM रेनबो पर। और दोस्तों, हमने बातें की उन ट्रैप्स के बारे में जिनमें कतई नहीं फंसना चाहिए, और कुछ चीज़ें बहुत ही साधारण सी हो सकती है, यानी कि साधारण सी बातों में आप फंस सकते हैं, ट्रैप हो सकते हैं, लेकिन कुछ बातें बड़ी खतरनाक भी हो सकती है। अब देखिए, हर इंस्टेंस में, यानी हर उदाहरण जो मैंने आपको दिए, यानी दो, एक तो भाई कहानी नुमा टीवी सीरियल नुमा प्लॉट, और दूसरा कि वाकई असलियत में जिस तरह लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है कोई गलत काम करवाने के लिए, तो ये जो है पूरा रेंज हमने जो है इसके ऊपर विचार किया। और वो क्यों पता है आपको? ताकि हम टारगेट ना हो सके। अब देखिए, टारगेट कोई आपको बनाता है तो ज़रूर वो आपको ऑब्जर्व करता है, देखते रहता है आपके क्या, आपके सारे एक्शंस क्या है, आप किस तरह सोचते हैं, आपके हाव भाव क्या है, और फिर जो है वो आपको आइडेंटिफाई करता है। ये बात तो मैंने आपसे साझा की ही, लेकिन देखिए साथ ही साथ और भी चीज़ें रही। अब आपको मैंने घुसपैठिए की भी कहानी बताई, ठीक है, उसका एक हिस्सा आपने सुना और ये सारी बातें हमने की, और मैंने आपको बताया कि किस तरह उसके पास जब वो मकसद नहीं रहा, उसका मन बदलने लगा, तो वो अपने असली मकसद पर आ गया कि यार अपने लिए कुछ करे, अपनी लाइफ के लिए कुछ करे। तो अक्सर जो है हम यही भूल जाते हैं, दूसरों की कहानियों में, दूसरों की बातों में फंस कर हमें क्या करना है भाई, हम दिशाहीन हो जाते हैं। तो ये चीज़ होती है ना जो कहलाती है कि अपना जो है काम करवाना बिना खुद फंसे। तो देखिए, उस घुसपैठिए ने पकड़े जाने पर ये सारी बातें बताई, और अगर ये सच है तो सोचिए कि जो आदमी था उसने इस टेक्नोलॉजी के युग में अपनी ओर से कुछ भी पता करने की जरूरत नहीं समझी, अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल भी नहीं किया, दूसरों के बहकावे में आ गया वो, और उसने समाज और दुनिया के लिए कुछ अच्छा करने के बजाय ब्रेन वॉश होकर गलत रास्ता अपनाया, तो उसे गुमराह करने वालों की ही तरह उसका भी दोष था कि उसने ये गलत रास्ता चुना। अगर सच में उसका मन बदल गया था तो इसका मतलब है कि कम से कम असलियत जानने के बाद उसको कबूल करने की, बदलने की उसने कोशिश की, और जिंदगी में जल्दी बाल खो देने के दुख पर फिर एक बार उसका ध्यान चला गया। वो जैसे देखें तो उसे भाई रियल समस्या ही कहेंगे, है ना, उसके लेवल पर। अब उसकी सोच सोचिए, उसके सोच के बारे में कि वो किसी के बहलाने फुसलाने में आ गया और गलत चीजें करने लगा, है ना। लेकिन उससे फिर कह सकते कि शायद वो बाल बाल बचा। आप भी अपने आप को बाल बाल बचाए दोस्तों। तो बात इतनी सी ही है कि किसी के भी बहका

पहरावे में आने से पहले ये सोचे कि ये इतना एफर्ट क्यों ले रहा है सामने वाला, इसमें उसका क्या फायदा है और क्या सच में आपका और सबका भला होगा। ये कुछ बातें और भी बातें हैं, बस थोड़ी देर बाद आपसे साझा करूंगी। आप सभी से कुछ देर के लिए जुदा होने से पहले बने रहे, सुनते रहे 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो। ब्रेक फ्री में हम बातें कर रहे थे कुछ बहुत जरूरी, यानी कि ट्रैप से बचने की बातें। और ट्रैप होता है बहकावे का, आपको बहलाने फुसलाने का, कभी पैसों से और कभी आपको बता करके आप कोई बहुत बड़ा महान काम कर रहे हैं। तो इन चीजों से बचना है दोस्तों। और कई सारे मैंने आपको दो तो उदाहरण दे ही दिए, और साथ ही साथ आपको बताया कि भाई जो बहकावे में आ जाता है वो कम से कम बहकाने वाले जितना ही अपराधी होता है। देखिए, अगली बात ऐसी है ना, कुछ चीजें मैंने आपसे साझा की थी कि किस तरह हमें किसी के ट्रैप में नहीं फंसना है। और इतना ही नहीं, हमें ये सोचना है कि कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, सारी चीजें पता करनी है। अब नियम कायदे कानून के खिलाफ तो नहीं है, ये खुद से पूछना जरूरी है। और ऑब्वियसली कि ज्यादातर लोग जो है अपने आप से जब ये सवाल पूछेंगे तो उनका दिल उन्हें सही जवाब ही देगा। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि सोशल मीडिया और आग जैसे तेजी से फैलने वाले झूठे और सच्चे

खबरों के जमाने में ये जरूरी है कि हम किसी भी गलत फहमी में या उत्तेजना में आकर किसी ट्रैप में ना फंसें और भाई इस घेरे से खुद को ब्रेक फ्री करें। बस ठीक 12 बजे आप सुन सकेंगे हिंदी में मुख्य समाचार, जिसके बाद होगा म्यूजिक कैफे शुरू। तो बने रहे, सुनते रहे 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: 12:17 हो चुके हैं और आइए इस घंटे के मुख्य समाचारों पर एक नजर डालें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज पेचिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता से पेचिंग और मॉस्को के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी और संयुक्त राष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका परिषद और ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से समन्वय बढ़ेगा। मुख्य समाचारों में आगे, केदारनाथ मंदिर यात्रा मार्ग पर कल रात हुई तेज बारिश के बाद सोनप्रयाग गौरीकुंड मार्ग के 3 स्थानों पर भूस्खलन होने से यात्रा प्रभावित हो गई। हालांकि जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया और हजारों श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया। मुख्य समाचारों के अंत में, ऑल इंडिया केमिस्ट और ड्रगिस्ट एसोसिएशन द्वारा ऐलान की गई हड़ताल में और मुंबई शहर तथा परिसर के कई दवा विक्रेता शामिल हुए हैं। ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री पर निर्बंध, कॉरपोरेट कंपनियों को दी जाने वाली रियायत पर रोक, अवैध दवाई विक्रेताओं पर कार्रवाई जैसी मांगों के लिए इस बंद का ऐलान किया है। इसी के साथ इस घंटे के मुख्य समाचार समाप्त होते हैं। म्यूजिक कैफे के लिए बने रहें 107.1 FM रेनबो पर।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का यह प्रसारण अब आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं। दोस्तों, हर इंसान संगीत प्रेमी होता है, बस हमारी पसंद अलग अलग होती है। किसी को इंडियन तो किसी को वेस्टर्न क्लासिकल संगीत पसंद होता है, किसी को लाइट म्यूजिक तो किसी को पॉप, या किसी और को फिल्मी संगीत, और कई सारे लोगों को फिल्मी संगीत पसंद है। और आप सभी हमारे श्रोता फिल्मी संगीत के ऐसे चाहने वाले, ऐसे दीवाने कि आपकी दीवानगी हमसे छुपी नहीं है। और अगर आप गौर करेंगे तो लोगों के रिंगटोन से लेकर कॉलर ट्यून तक बहुत दिलचस्प होते हैं, और ये भी एक तरह से संगीत ही का तो हिस्सा है। तो चलिए आज संगीत का ये साइड भी एक्सप्लोर कर लेते हैं और कुछ अतरंगी और कुछ दिलचस्प गानों को म्यूजिक कैफे में एक्सप्लोर करते हैं। बने रहे, सुनते रहे 107.1 एफएम रेनबो, म्यूजिकली योर्स। मैं हूं वैशाली और आप सभी के साथ बनी हुई हूँ। तो सबसे पहला गाना भाई ऐसा ना कि जिसे हम चलते फिरते बोल देते हैं मुंबई में, यानी कि वो कौन सा है भाई? अरे

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
2: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
1: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, म्यूजिक कैफे चल रहा है, मैं हूँ वैशाली। दोस्तों, बात हो रही है संगीत के उस पहलू की जो होती है बड़ी मज़ेदार। और संगीत ही क्यों भाई, आवाज़ें और कई सारी चीज़ें, और एक जो हिस्सा है संगीत का वो कॉलर ट्यून्स और रिंगटोन्स भी है, और कभी कभी कुछ तो ऐसे गजब होते हैं। अब चलिए, सिर्फ इतनी ही बातें नहीं होती है। अगर हम आवाज़ों के बारे में बात करें, साउंड के बारे में बात करें, तो कुछ आवाज़ें जो होती है वो संगीतमय या संगीत नहीं होते। हम सभी ये बहुत ही अच्छे तरह से जानते हैं। आपको एक किस्सा सुनाना चाहती हूँ मैं। हाँ भाई, आज किस्से ही किस्से हैं। दो किस्से पहले सुनाए आपको, और अभी एक और किस्सा, और फिर एक और किस्सा होगा ज़रूर। अब देखिए, ये किस्सा कुछ ऐसा है, ये मेरा अपना है। मैं हमेशा ही की तरह रोड क्रॉस कर रही थी और चौकन्ना थी, बहुत ध्यान से रोड के किनारे खड़ी थी कि एकदम से मैंने कुछ सुना। अब आप पूछोगे क्या सुना भाई, क्या सुना? तो जो मैंने सुना वो ट्रक का हॉर्न था। मैं तकरीबन कूद गई हवा में और डर के मारे, यानी ऐसे मेरे पैरों तले जमीन फिसल गई, खिसक गई, हट गई। और फिर मैंने पाया कि भाई जो हॉर्न मार रहा था वो ऑटो वाला था, उसे पार्किंग चाहिए थी, और पार्क करने के लिए, मुझे साइड हटाने के लिए उसने हॉर्न मारा था। लेकिन देखो भाई, हॉर्न कैसा था, वो ट्रक वाला था। मैं वाकई डर गई, मुझे लगा कि मैं इतने अच्छे से रास्ते के किनारे खड़ी हूँ, एकदम से बड़ी सी ट्रक कहाँ से आ गई, मुझे जो दिखाई नहीं दी। लेकिन बात ऐसी है, वो ट्रक ना होकर ऑटो रिक्शा थी। मुझे इतना तेज गुस्सा आया ना ऑटो वाले पर, और उसी के साथ साथ शर्मिंदगी भी महसूस हुई कि यार ये क्या हो गया, यानी कि आप समझ सकते हैं कैसा लगता है।

होता है जब आप उम्मीद कर रहे होते हैं हाथी की ओर निकलता है चूहा, और फिर जो है बड़बड़ाते हुए मैंने उसे साइड तो दिया और अपने जो तेजी से धड़कते दिल को थाम कर मैं चुपचाप आगे निकल गई। अब क्या ही कर सकती थी भाई। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि ये भाई थी तो ऑटो लेकिन उसका हॉर्न

0: कभी लगता दूर है ये
1: तो कभी लगता पास है।
2: रंगों में न जाने क्या बात है,
1: दिल झूम उठा है अचानक ऐसे,
0: जैसे कोई हर वक्त दिल के पास है।
3: ये मजा रंगों का है, सुमधुर गीतों का है,
1: क्योंकि ये है आपका अपना
2: 107.1 FM रेनबो, दिल से
1: दिल तक।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो म्यूजिक कैफे चल रहा है और बातें हो रही है कई सारी बहुत ज्यादा मजेदार। हमारे साथ होता है ना अक्सर कि संगीत पता नहीं किस फॉर्म में हमारे सामने आ जाए और आवाजें जो साउंड्स के बारे में बात कर रही हूं मैं वो भी भाई खतरनाक एक से बढ़कर एक होते हैं। आपको कुछ किस्से सुना ही रही हूँ और साथ ही साथ कुछ अपने ऐसे एक्सपीरियंसेस बता रही हूँ जो बहुत ही मज़ेदार है और मुझे सोचने पर मजबूर कर रहे हैं, तो लाजमी है कि मैं अब जो है ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डालूंगी यानी आपके साथ साझा करूंगी क्योंकि इन्हीं बातों पर तो चर्चा हो सकती है। अब देखिए दोस्तों, एक बार मैं ट्रेन में सफ़र कर रही थी और इतनी परेशान हो गई थी कि मत पूछिए। मुझे एक बच्चे की बातें करने और हंसने की आवाज़ लगातार आ रही थी और छोटे बच्चे की, बहुत ही छोटा यानी कि शिशु कह सकते हैं हम। बच्चा चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि बिना बच्चा दिखे ये कैसे मुमकिन है, कहाँ छुपा है इतना छोटा बच्चा जो शिशु हो, वो तो किसी के गोद में होगा, वो ऐसे ही घूम फिर तो नहीं सकता। और फिर अचानक कहीं से दौड़ता हुआ एक आदमी आया, कहीं से फोन निकाला उसने और बात करने लगा। उफ, आप समझ ही गए होंगे मेरा इशारा किस तरफ है। उस बच्चे के हंसने की आवाज और लगातार बातें करने की आवाज उसका रिंगटोन था भाई। ऐसा रिंगटोन मैंने उससे पहले कभी नहीं सुना था, कसम से। वो आदमी बच गया उस दिन, वरना मैं स्टेशन पर कंप्लेन करने ही वाली थी। अब देखिए, मैं एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन में थी। अब ऐसी ट्रेनों में आप सभी जानते हैं कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस होती है, कोई भी चढ़ता उतरता है और कितनी चीज़ें होती हैं भाई। और मुझे लगा किसी ने बच्चे को कहीं पर छुपा कर रखा है और कुछ गलत हो रहा है, तो मैं भाई चौकन्ना हो गई और सोच ही रही थी कि जहाँ कहीं भी लंबा हॉल्ट होगा मैं जाके कंप्लेन करूंगी कि बच्चा कहीं पर रो रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। तो ये मजेदार बात हुई यार मेरे साथ ट्रेन में, कसम से। वो आदमी सच में बच गया उस दिन। अब मैं सोच रही थी कि भाई ऐसा बच्चा, सोचिए जो बच्चा दिखाई दिए बिना इतना हंस रहा है और दिखाई दिए बिना वो रो भी सकता है ना, तो मुझे लगा अभी तो बातें कर रहे हैं हंस रहे, शायद कुछ देर में रोने लगे क्योंकि छोटे बच्चे ऐसा करते हैं ना। सोचिए बस मैं बिना वजह परेशान हो गई। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ है क्या, ऐसे किससे, तो बताइए हमें। हमारा व्हाट्सएप पर मैसेज करने के लिए नंबर है 8657661071 और लैंडलाइन पर कॉल करने के लिए हमारे नंबर्स हैं 4515-4132, 4515-4133। मैं हूँ वैशाली, आप सभी के साथ बनी रहूंगी दोपहर के 2 बजे तक। चलिए बढ़ते हैं कुछ और मजेदार गानों की तरफ, सुनते रहें, बने रहें 107.1 FM रेनबो पर।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो म्यूजिक कैफे पर. म्यूजिक कैफे चल रहा है इस चैनल पर. और भाई बातें मैं कर रही हूँ संगीत की भी, यानी फनी से गाने वगैरह और रिंगटोन्स और कॉलर ट्यून्स भी आजकल बहुत फनी होते हैं, अजीब से होते हैं. और क्या बातें बताऊँ आपको, मैं बस किससे ही बता रही हूँ. मुझे खुद ही को हंसी आ रही है सोच सोच कर, याद करके कि क्या क्या होता है ना हमारे साथ. अब देखिए, एक स्मार्ट बच्चे की आपको बात बताती हूँ और ये किस्सा जो है वाकई सच है यहाँ. और ऐसे कई किस्से होंगे, आपके पास भी कुछ ना कुछ होगा बताने के लिए. एक बड़ा ही स्मार्ट बच्चा परीक्षा देने बैठ गया था, पर वो फोन अपना साइलेंट पर रखना भूल गया. चलते एग्जाम में अचानक एक आदमी चिल्लाने लगा. सोचिए, चल रहा है एग्जाम और हर तरफ जो है शांति फैली हुई है, लेकिन कोई आदमी चिल्ला रहा है जोर जोर से. सुपरवाइजर और बच्चे एकदम से चौंक गए, और बल्कि मैं कहूंगी कि डर गए. ऐसा नहीं सिर्फ चौंके, उन्हें लगा कि कोई डांट पड़ रही है. उन्हें लगा कहीं कोई एग्जाम इंस्पेक्टर वगैरह तो नहीं आ गए हैं या प्रिंसिपल. और वो जो चिल्ला रहा था ना, वो डांट लगा रहा था, तुम ना किसी काम के नहीं हो, एक नंबर के काम चोर हो. हाँ तुम, और बाकी तुम सब भी, अब तुम्हें सजा मिलेगी. हाँ मैं दूंगा सजा, फलाना फलाना. यूं तो देखिए कि कोई भी प्रिंसिपल हो और कोई भी इन्विजिलेटर हो और ऐसे एग्जाम के हो तो सुपरवाइजर्स, तो वो तो बहुत अच्छे से पेश आते हैं. लेकिन ये लोग डर गए, ने लगा किसी से कोई गलती हो गई, कोई भूल हो गई, और वो भूल वो गलती पकड़ी गई तो अब खूब डांट लग रही है. पर आपको पता है क्या हुआ था, आप समझ ही गए होंगे शुरुआत में, आप सभी तो इतने इंटेलिजेंट है ही. वही इस तरह की डांट सुन के लोग चौंक तो गए, फिर जब वही डायलॉग बार बार दोहराया जा रहा था तब पकड़ में आई बात. एक बड़े ही स्मार्ट बच्चे ने जब अपना फोन लेकर आया था और फोन साइलेंट पे रखना भूल गया था, उसका रिंगटोन था ये. और ये डायलॉग जो इतना असली लग रहा था ना, वो कोई कहीं का डायलॉग नहीं था फिल्म का, ये बल्कि उसके डैडी की बातें थी. हाँ, उसके पापा उसके पिता की बातें थी, और वो उसने लगाया था एज अ रिंगटोन रिमाइंडर के लिए. और ये लगाया था उसने अलार्म के तरीके से भी, ताकि उसको रिमाइंडर मिले कि बातों में ज्यादा वक्त जाया ना करके भाई पढ़ाई करे. तो उसने अपने पापा की डांट को रिकॉर्ड करके उसे अपना रिंगटोन और अलार्म लगा दिया था. बच्चे, हाय बच्चे, बड़े स्मार्ट बच्चे होता है ऐसा. देखो उसने बहुत ही अच्छा आइडिया किया, कमाल का आइडिया किया है ना. ऐसे डांट सुनता रहेगा तो भाई पढ़ाई करेगा ना. तो अपने आप को याद दिलाने के लिए उसने ये काम किया. इतनी गजब चीजें करते हैं ना कुछ लोग. और अभी आप में से कुछ श्रोताओं ने भी कुछ बातें साझा की है जो मैं आप सभी को सुनवाऊंगी अगले घंटे में, यानी हिट एंड हॉट में. बने रहे, सुनते रहे 107.1 FM रेनबो म्यूजिकली.

0: ए वॉल्यूम कम कर पापा जब जाएगा।
1: ओ भाई फू फुगड़ी फू यू लाइक मी एंड आई लाइक यू टू। ओ भाई फू फुगड़ी फू यू लाइक मी एंड आई लाइक यू टू। ओ भाई फू फुगड़ी फू यू लाइक मी एंड आई लाइक यू टू।

0: वाटर बॉम्ब सोडा आडवे रॉकेट गाय फुल जड़ी से तूने भरेले पॉकेट अरे वारा बन मेरे जाई सबन ये ले नाना का बॉम्ब जाके उड़ा दे घर
1: फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू

ठीक 1 बजे आप सुनेंगे दोपहर के समाचार। छत्रपति संभाजी नगर केंद्र से बने रहें 107.1 FM रेनबो पर।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं। दोस्तों, आपके दिल की बातें और मनपसंद गाने जैसे रिमझिम बरसात में गर्मा गर्म चाय और समोसे, हिट एंड हॉट में 107.1 एफएम रेनबो पर। आपके पसंद के गाने हम प्ले करेंगे एक एक करके और साथ ही साथ साझा करेंगे वो बातें जो आपने हमारे साथ शेयर की हैं। मुझे कॉल आया अयाज चौधरी इनका और इन्होंने बताया कि दोनों शो की बातें उन्हें बहुत अच्छी लगी। कहते हैं कि ऐसा होता है, हाँ कहते हैं कि लोग हमें एक्चुअली ऑब्जर्व करके ट्रैप करने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं उसमें हमारी कमजोरी होती है। ये पॉइंट उन्हें बड़ा अच्छा लगा और वो भी इस चीज से इत्तफाक रखते हैं। वो कहते कि हाँ एक्चुअली लोग ऑब्जर्व करते हैं कि भाई इसे है ना, इसे बुद्धू बनाया जा सकता है या चलो इसे अपने साथ शामिल कर लिया जा सकता है या फलाना जो भी चीज हो ये किया जा सकता है। ऐसे एक्चुअली लोग आपको आइडेंटिफाई करते हैं टारगेट करने से पहले। तो उन्होंने कहा ये बात बिल्कुल सही थी और उन्होंने कहा दूसरे जो म्यूजिक कैफे के लिए कि जब वो एक बार सफर कर रहे थे बस में तो पानी के बहने की आवाज आने लगी। वो सोच में पड़ गए क्योंकि वो देख नहीं सकते तो इसलिए वो सोच में पड़ गए कि भाई ये कहाँ से पानी बह रहा होगा बस में, ये कैसे हो सकता है, ये क्या मुमकिन चीज है। फिर उनको रियलाइज हुआ जब लाइट की फ्लैशेस भी उन्हें लगी कि नहीं हो रही है, कहीं से महसूस किया उन्होंने, तो उन्हें समझ में आया कि भाई बस में किसी यात्री का, आसपास के किसी यात्री का रिंगटोन था वो जिसमें कल कल पानी के बहने की आवाज थी। तो कहते हैं फिर मैं निश्चिंत हो गया और मुझे वो जो ध्वनि है वो बहुत पसंद आई, वो बहुत प्यारी थी और बहुत सुकून मिला। क्या बात है। और आप में से कई सारे श्रोताओं के हमें मैसेजेस आए हैं, उसके लिए धन्यवाद। मुझे यहाँ पर जो है अंजू जी का मैसेज आया, इन्होंने अपनी बातें बताई कि किस तरह वो डॉक्टर थी और यानी कि एज डॉक्टर वो काम भी करती थी। लिखती है कि बीएमसी में मेरी जॉब थी पर मुझे ये पता था कि सारी चीज़ें मैनेज करनी है तो इसलिए, हालांकि मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप प्रैक्टिस करो प्राइवेट, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि घर को, बेटियों को और साथ ही साथ खुद को भी समय देना था जो प्राइवेट प्रैक्टिस में नहीं हो पाता। और लिखती है कि अब रिटायर्ड हूँ इसलिए एफएम रेनबो सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे, गाने भी, आरजेस भी, पूरा रेनबो पर माहौल भी बहुत अच्छा लगता है, ऐसा उन्होंने लिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंजू जी। और साथ ही साथ हमें मैसेज आया है चेतन कुमार का गया बिहार से, ये लिखते हैं कि गाने की फरमाइश जो कर रहे हैं वो ही भेजी है। और यहाँ पर संजय दर्शन जी का भी मुझे मैसेज आया है, इन्होंने लिखा कि गुड मॉर्निंग जी, आपने पतंग उड़ा दी है रेनबो की यानी के खुशी से, रेनबो वाली आकाशवाणी में सबके दिल को छू कर आएगी ये पतंग। वाह क्या बात है, आपकी सोच कितनी प्यारी है, निराली है, धन्यवाद। और मुझे मैसेज आया है विजय महोबिया, इनके पूरे परिवार की तरफ से, और ये लिखते हैं हमें जिस जगह से, वो है खंडवा। आगे धनंजय जी नवी मुंबई से भी हमें मैसेज भेजते हैं कि एंजॉय कर रहे हैं शो, मज़ा आ रहा है। और यहाँ पर रजनीकांत पाटिल जी वाडवन से हमें मैसेज करते हैं, शुभलक्ष्मी मस्तकर जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, पंकज मोहर जी का, प्रमोद चिंचोलकर जी का, फिरोज जिगनपुरिया जी का भी हमें कॉल आया, यहाँ पर मैसेज आया है, माफ कीजिएगा। और बहुत जल्द सभी के गाने मैं प्ले करूँगी। सबसे पहले जो दो गाने प्ले करूँगी वो हैं, ये सिलसिला है प्यार का और गुप्त का गाना जिसकी फरमाइश इन्होंने की है अयाज चौधरी ने, दुनिया हसीनों का मेला। तो ये

आप सुन रहे हैं हिट एंड हॉट 107.1 एफएम रेनबो पर. और यहाँ पर मुझे मैसेजेस कई सारे आए हैं, और जैसे मैंने कुछ समय पहले बताया कि मुझे कॉल आया और मैसेजेस भी आए हैं पंकज मोहोड़ इनके, और इन्होंने अपने गाने की फरमाइश तो की ही है, साथ में ढेरों बातें लिखी है. तो चलिए थोड़ा मैं कोशिश कर रही हूँ कि कहाँ से पढ़ूँ, क्योंकि इतने मैसेजेस जब आते हैं तो वाकई मैं भी सोच में पड़ जाती हूँ कि भाई शुरू करूँ तो कहाँ से करूँ. अब देखिए, पंकज जी ने जो मुझे बात फ़ोन पर भी बताई वो उसका जिक्र करती हूँ. इन्होंने लिखा है और बताया भी कि जब रोड क्रॉसिंग के समय ट्रक का हॉर्न सुनकर मैं चौंक गई डरकर, तो उसी तरह उनके साथ भी कुछ हुआ था. और उन्होंने बताया मुझे कि भाई वो रोड क्रॉस कर रहे थे और अचानक से गाड़ी कहीं से आ गई, हालांकि उसकी हॉर्न बहुत ही हल्की सी थी, बहुत ज़ोर से नहीं बजाया उन्होंने, लेकिन वो खुद तो चौंक गए.

होते ही ऐसे हैं जो बहुत ही लाजवाब होते हैं, मजेदार होते हैं और भाई बहुत अच्छा लगता है। और इन्होंने और भी कुछ लिखा है यहाँ पर कि उन्हें फिल्म संगीत, मेलोडी सॉन्ग्स, 90s के गाने, एवरग्रीन, सदाबहार, पुराने गाने सारे उन्हें पसंद है, क्योंकि संगीत जो है वो दवा की तरह है, लिखते हैं। और लिखते हैं, मेरा मूड अगर खराब हो जाए तो मैं तो अच्छा संगीत सुनता हूँ तो मेरा मूड बिल्कुल सही हो जाता है। और सुबह में उन्हें भक्ति गीत सुनना बहुत अच्छा लगता है, पूरा दिन उनका अच्छा बीतता है। वाह क्या बात है, बहुत अच्छा लगा मुझे जानकर। प्रमोद चिंचोलकर जी ने भी हमें मैसेज किया अकोला से और ये लिखते हैं अपनी फरमाइश के साथ कि हिट एंड हॉट कार्यक्रम में गाना सुनना चाहते हैं वगैरह। और लिखते हैं कि अच्छा, फिर उन्होंने गीत ही की बात लिखी है कि कुछ भी ना कहो क्या कहना है, ये गाना बहुत पसंद है उन्हें। और पता है, बस एक मैं हूँ बस एक तुम हो, ये उन्होंने लिरिक्स लिखे हैं। वाह क्या बात है। और हाँ, उमरी गांव से ये मैसेज कर रहे हैं। वाह, आगे फिरोज गनपोरिया हमें मैसेज करते हैं, लिखते हैं कि हमें आपकी स्टोरी बच्चों के रिंगटोन वाली सुनकर बहुत मजा आया, पसंद आई वो कहानी किस्सा यानी। लिखते हैं कुछ गाने जिनका ये जो सुनना चाहते हैं और लिखते हैं कि अपने वर्ल्ड म्यूजिक लवर्स ग्रुप को ये डेडिकेट करते हैं। और बाबा दादर से हमें मैसेज भेजते हैं, धन्यवाद आपका। और मेहर अरोड़ा जी श्री गंगानगर राजस्थान से हमारे साथ बने हुए हैं। अब कोशिश रहेगी दोस्तों कि दो गाने आप सभी के लिए बैक टू बैक प्ले हो, तो बने रहे, सुनते रहे 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स। ये गाना जो है पंकज महोट जी की फरमाइश है और उसके बाद जो होगी फिरोज गनपोरिया इनका गाना प्ले होगा।

हिट एंड हॉट चालू है, जारी है 107.1 FM रेनबो पर. और अभी मैं जिनके गाने प्ले करने वाली हूँ वो है चेतन जी गया से और प्रमोद चिंचोलकर जी. इनकी फरमाइशें मैं प्ले करने वाली हूँ. आगे फिर विजेंद्र घाटोल जी और प्रणव शिंदे जी की फरमाइशें भी प्ले होंगी. यहाँ पर हमें प्रणव शिंदे जी लिखते हैं कई सारी बातें. लिखा है इन्होंने कि आज ही के दिन जो फिल्में रिलीज हुई थी, यानी आज ही के दिन नहीं हुई थी, बेसिकली 19 तारीख को हुई थी और आज 20 है, तो बिल्कुल इतना समय जो हो चुका है कुछ फिल्मों को वो उन्होंने शेयर किया है. 1967 में आई थी फिल्म आमने सामने. और लिखते हैं क्या कहना, ये फिल्म भी रिलीज हुई थी. रघुवीर, ये फिल्म रिलीज हुई है तो 31 साल रघुवीर को हुए हैं. क्या कहना को 26 हुए हैं. और लिखते हैं आमने सामने को 59 साल हो चुके हैं. वाह क्या बात है. और इसी का जश्न मनाते हुए उन्हें इनमें से एक फिल्म का गाना सुनना है. बिल्कुल हम आपके लिए प्ले करेंगे. और लिखते हैं मुझे फिल्म की रिलीज एनिवर्सरी लिखना और रेनबो पर भेजना बहुत अच्छा लगता है, मेरी हॉबी है. अब हम जानते हैं ये प्रकाश जी, प्रणव जी आपके बारे में कि आप ये बहुत इन्जॉय करते हैं. और इन्होंने कई, अच्छा माफ़ कीजिए, मुझे लगता है बहुत पीछे चली गई आपके मैसेजेस देखते हुए. तो वो कल के लिए आपने भेजा था, आज के लिए आपने भेजा है राम अवतार. ये फिल्म रिलीज़ हुई थी 88 में आज ही के दिन. और इन्होंने गाने की फरमाइश की है तो मैं क्या कहना देख कर थोड़ी सी कन्फ्यूज हो गई थी क्योंकि यहाँ भी इन्होंने क्या कहना की फरमाइश भेजी है हमें. तो एक गाना जरूर प्ले करूंगी आपके लिए इनमें से. और लिखते हैं कि बॉलीवुड संगीत और आप सभी आरजेज की बातें हमारी जिंदगी के हर रंग को और खूबसूरत बना देती है, धन्यवाद. और लिखते हैं कि दिल का हर हाल बयां करता है संगीत, आरजे की बातें जगाती है नई प्रीत, गम हो या खुशी हर पल है हंसी, रेडियो की दुनिया बदल देती है जिंदगी की रीत, तन्हाई में जो गूंजे वो सुरीला साज है बॉलीवुड, डूबते हुए दिल की एक सादगी भरी आवाज है बॉलीवुड, आरजे जब बोलते हैं तो खिल उठती है उम्मीदें, हर उदास चेहरे की मुस्कुराती हुई परवाज है बॉलीवुड. वाह क्या बात है. आपने बॉलीवुड एफएम रेनबो आकाशवाणी आरजे सभी की तारीफ एक साथ आपने पिरो दी अपने खूबसूरत शब्दों में, बहुत बहुत धन्यवाद. तो तीन गाने दोस्तों आप सभी के लिए बैक टू बैक प्ले होंगे. बने रहे, सुनते रहे 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स.

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का 107.1 FM रेनबो और आप श्रोताओं के मैसेजेस आ रहे हैं और आपकी भी बातें बहुत ही मजेदार हैं। तो अभी जो है दोस्तों, मैं जो गाना प्ले करने वाली हूँ कुछ ही देर में, ओ सोनिए दिल जानिए, ये है फरमाइश प्रकाश शिंदे, प्रणव शिंदे इनकी। और उसके बाद वन ऑफ द सॉन्ग्स जो मैं प्ले करूंगी, जो भी कस्में, ये है NM पाटिल जी की फरमाइश, जिन्होंने कुरला से हमें मैसेज किया है। अब इन्होंने एक किस्सा बताया है, इन्होंने लिखा है कि एक बार रिक्शा से मार्केट जा रहे थे ये, तब एक 6 साल की बच्ची ने उनसे पूछा कि अंकल मुझे जरा सिग्नल तक पहुंचा दोगे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है और उसको बैठने दिया ऑटो में। तो लिखते हैं कि उसके हाथ में 2-3 बहुत ही खूबसूरत पर्सेस थी और उन्होंने पूछा उस बच्ची से कि कहां ट्यूशन जा रही हो, तो बोली कि ना। फिर पूछा हॉबी क्लास, बोली ना ना। फिर पूछा कोई स्पोर्ट्स क्लास, तो कहती है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तो इन्होंने पूछा कि भाई करती क्या हो, तुम्हारे हाथ में इतने पर्सेस हैं, तो उसने कहा कि मैं पर्स बेचती हूँ, क्या आप खरीदोगे। तो लिखते हैं मैं शॉक हो गया कि 6 साल की उम्र में मार्केटिंग कर रही है बच्ची, ये सब चीज़ें बेच रही हैं और उसकी यानी कि दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि 1 का ₹70 और 2 का ₹120 ऐसे उन्होंने बताया। और बोलते हैं कि उसके क्वालिटीज़ ऐसे देना कि वो सबसे यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर से मिले, ऐसा उनको फील हुआ। लेकिन मैं ये भी कहूँगी पाटिल जी के ये थोड़ी सी बात है ना, चाइल्ड लेबर की भी हो गई, वो अपने मर्जी से तो नहीं करेगी ना कारोबार, 6 साल की बच्ची, तो ये बात जो है कतई अच्छी नहीं है। हालांकि हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि बच्चे इस वजह से बहुत तैयार हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा यानी कि मुझे लगता है दुख का विषय है ना, कि इतनी छोटी बच्ची को कारोबार करना पड़े, पर्स बेचने पड़े कुछ कमाने के लिए पैसा। आगे विजेंद्र घाटोल जी ने हमें जो मैसेज किया था, तो उनका भी मैं सॉन्ग प्ले करने वाली हूँ। बाकी मैं बता दूँ हमें किन के मैसेज आए, क्योंकि समय खत्म होते जा रहा है बहुत जल्द। मुझे निशा भूते इनका मैसेज आया है रत्नागिरी से, इनका गाना मैं प्ले नहीं कर पाऊंगी, मुझे खेद है, क्योंकि शायद 3 गाने भी ना जा पाए, लेकिन कोशिश रहेगी। यहाँ पर जो है अजय साखरे जी का भी मैसेज आया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इंदौर से हमें लिखते हैं। और संदीप कुमार जी लिखते हैं आज मेरी बेटी मन्नत मकर भी मेरे साथ में है। अच्छा, मन्नत मकड़, मकड़ उनका शायद नाम है सरनेम, तो इन्होंने भी फरमाइश भेजी है, लेकिन थोड़ा मुश्किल लग रहा है। राकेश माथुर जी भी हमें लिख भेजते हैं, मुकेश कश्यप जी भी पूरे परिवार समेत हमें सुन रहे हैं। यहाँ पर दिग्दर्शन और कविता मेरठ से हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप अनंत कृष्णन जी के मैसेजेस अभी लोड नहीं हुए हैं, कुछ हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमसे जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाहती हूँ, चाइल्ड लेबर वाली बात जो है, सच में आपको भी दुख लगा ना सुन के, थोड़ा सा दर्द भरा है कि हालांकि मैं दाद दूंगी पाटिल जी के नजरिए कि थोड़ा अलग इन्होंने सोचा। चलिए आगे बढ़ते हैं गानों की तरफ और आप सभी से मैं इजाजत ले लूं, मिलूंगी आपसे 29 तारीख को जो शुक्रवार है, इसी समय 11 से दोपहर 2 के बीच। तो बने रहे, सुनते रहे, खुश रहे, हंसते रहे, 107.1 FM रेनबो पर है आप, म्यूजिकली योर्स।

0: maximum heat in the last 24 hours. Fareedkot in Punjab sizzled at 47.3 degrees Celsius and Rohtak felt the heat at 46.9 degrees Celsius in Haryana. Rajesh Bali, Akashwani News, Jalandhar.
1: In Bangladesh, an assistant security protocol officer at the Assistant High Commission of India in Chattogram has been found dead at the mission premises in the Kulshi area. Police said the incident occurred yesterday morning. The deceased has been identified as a 35-year-old Narendra, a resident of Haryana in India, who was serving at the mission. The Assistant High Commission of India is in touch with the family to arrange the repatriation of the mortal remains. Chinese President Xi Jinping and Russian President Vladimir Putin held talks in Beijing today, focusing on bilateral relations and key global issues, including Iran, the Ukraine conflict, and the international trade. China's foreign ministry said the talks would deepen the strategic partnership between Beijing and Moscow and enhance coordination through forums such as the United Nations, SCO, and BRICS. Both nations also highlighted the growing cooperation in trade, energy, and security, with bilateral trade surpassing $200 billion. The meeting came shortly after U.S. President Donald Trump visited China for discussions with Xi on regional and global developments. U.S. President Donald Trump will attend the G7 summit in France next month amid growing tensions between Washington and several European allies over the Iran conflict. According to a White House official, the summit to be held from June 15 to 17 in Avion-les-Bains in southeastern France will focus on issues including artificial intelligence, trade, critical minerals, immigration, and global security. In Congo, the death toll due to Ebola outbreak has risen to 136. Health Minister Roger Kamba informed this amid the spread of deadly virus that has gripped the eastern part of the country. According to Congolese health authorities, the country has recorded 543 suspected cases and 32 confirmed infections, while neighboring Uganda has reported 2 confirmed cases. On to sports. In IPL cricket, Kolkata Knight Riders will take on Mumbai Indians at the iconic Eden Gardens in Kolkata. The match will begin at 7:30 p.m. Yesterday, Rajasthan Royals defeated Lucknow Super Giants by 7 wickets in a high-scoring match in Jaipur last night, keeping their playoff hopes alive. Rajasthan Royals overhauled the massive target of 221 runs with 5 balls to spare. Benchmark domestic equity indices were trading marginally lower in the afternoon session. The Sensex dropped 101 points to 75,100, while the Nifty dipped 24 points to 23,594 when reports last came in. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome in a short while from now to boost economic cooperation. Prime Minister Modi and Giorgia Meloni outline roadmap for India-Italy strategic partnership, highlight several economic initiatives in a joint article. DRDO completes trials of drone-launched unmanned precision-guided missile. Defence Minister terms it a strategic milestone. Supreme Court rejects petition challenging centre's decision to undertake caste enumeration. Severe heatwave grips north and central India. Temperature breaches 44-degree mark at several places. And in IPL cricket, hosts Kolkata Knight Riders to take on Mumbai Indians at Eden Gardens. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल यूएलपीजीएम MP3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी। कई स्थानों पर तापमान 44 डिग्री के पार। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के साथ साथ मौजूदा वैश्विक परिदृश्य पर भी व्यापक बातचीत करेंगे। दोनों देशों के बीच आज कई महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना है। दोनों नेता कई विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। आज की बातचीत से भारत इटली की मित्रता को और बढ़ावा देने पर चर्चा की जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के महत्व को दर्शाने के लिए रोम में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे इटली के प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक व्यवस्था में गहन परिवर्तन हो रहे हैं, भारत इटली साझेदारी उच्चतम राजनीतिक और संस्थागत स्तरों पर नियमित आदान प्रदान से निर्देशित है। दोनों नेताओं ने कहा कि उनका सहयोग इस साझा समझ को दर्शाता है कि 21वीं सदी में समृद्धि और सुरक्षा राष्ट्रों के नवाचार करने, ऊर्जा परिवर्तन का प्रबंधन करने और कूटनीतिक संप्रभुता को मजबूत करने की क्षमता पर निर्भर करेगी। दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता दोनों दिशाओं में व्यापार और निवेश के प्रवाह को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियाम पावलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशक से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यूबैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस अत्यंत उपयोगी बैठक में दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। यह समझौता ज्ञापन भारत के राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, कोरिया राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सहयोग के बीच हुआ। रक्षा मंत्री ने कहा कि वे दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
4: ये परीक्षण आंध्र प्रदेश में कुरनूल के पास DRDO की टेस्ट रेंज में एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों तरह से किए गए। इस दौरान

0: की है। उन्होंने टैंक रोधी भूमिका के लिए हवा से जमीन मोड और ड्रोन हेलीकॉप्टर तथा अन्य हवाई लक्ष्यों के लिए हवा से हवा मोड में इसकी प्रभावशीलता के बारे में जानकारी दी। श्री सिंह ने इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका आज खारिज कर दी। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। पीठ ने कहा कि इस तरह के आंकड़े एकत्र करने में कोई बुराई नहीं है और मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्तियों में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक ट्रस्ट की याचिका पर नोटिस जारी किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता उत्तर बंगाल का सर्वांगीण विकास है। उन्होंने कहा कि वो विकास परियोजनाओं की समीक्षा और सरकारी योजनाओं के प्रभावों की निगरानी के लिए हर महीने एक बार उत्तर बंगाल का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल विकास मंत्री उत्तर बंगाल सचिवालय उत्तरकन्या सिलीगुड़ी में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जनता दरबार का आयोजन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जनता दरबार के बाद दिन में 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक अधिकारियों के साथ प्रशासनिक समीक्षा बैठक होगी और उसके बाद उसी दिन दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक विकास मंत्री क्षेत्र के सभी सांसदों और विधायकों के साथ विकास कार्यों को गति देने के लिए समीक्षा बैठक करेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस 2026 के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र के महानिदेशक नवीन कुमार सिंह ने आज कहा कि देश के डिजिटल अर्थव्यवस्था से वर्ष 2030 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में लगभग 20% के योगदान देने की उम्मीद है। वे नई दिल्ली में फिक्की के साइबरकॉम के 7वें संस्करण के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मध्य प्रदेश के भोपाल में नोएडा की 33 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर त्वरित निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। महिला आयोग ने 7 दिन में विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबू धाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का अंतिम संस्कार आज हरिद्वार में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति बताया।
1: मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी का जाना पूरे राज्य के लिए और देश के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है और उन्होंने सेना के अधिकारी के रूप में देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं दी, अभूतपूर्व योगदान दिया। उसके बाद भारत सरकार में मंत्री के नाते और राज्य में मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने शुचिता, पारदर्शिता और अनुशासन और समय की पाबंदी, ऐसे बहुत सारे अनुकरणीय जो कार्य हैं अपने समय में किए, वो हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में लू की स्थिति बने रहने का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान के अधिकांश जिले भी इस समय भीषण लू की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के 2 जिलों में लू की स्थिति

0: को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जबकि 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
1: प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। ज्यादातर जिलों में दिन का पारा 42 से 46 डिग्री वहीं रात का तापमान 46 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। इस बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन को लेकर सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए अलग से बेड आरक्षित रखने, जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराने के साथ छाया और पेयजल का प्रबंध करने को कहा गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: पंजाब और हरियाणा में भी भीषण गर्मी जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने दोनों राज्यों में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
2: चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग के डायरेक्टर सुरेंद्र पाल ने आकाशवाणी को बताया कि आने वाले 3-4 दिनों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान बढ़ेगा। दोनों राज्यों के पश्चिमी जिलों में लू की स्थिति रहेगी। पंजाब में ये जिले अमृतसर, फिरोजपुर, तरनतारन, मानसा, संगरूर, बठिंडा और मुक्तसर होंगे और हरियाणा में हिसार, रोहतक, झज्जर, भिवानी, गुरुग्राम और फरीदाबाद में सबसे ज्यादा गर्मी महसूस होगी। पिछले 24 घंटों में पंजाब में फरीदकोट 47.3 डिग्री सेल्सियस और हरियाणा में रोहतक 46.9 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म जिले रहे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता से बीजिंग और मॉस्को के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी और संयुक्त राष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका परिषद और ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से समन्वय बढ़ेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और कई यूरोपीय सहयोगियों में बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 101 अंक गिरकर 75,100 जबकि निफ्टी 24 अंक की गिरावट के साथ 23,594 पर कारोबार कर रहा था। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल ULPGM-V3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

केके की आवाज, संदीप श्रीवास्तवा के अल्फाज, प्रीतम की कॉम्पोजिशन, न्यूयॉर्क इस फिल्म से सुना आपने ये गाना। आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो और जी लव यू जिंदगी। ये

0: प्रोग्राम लेकर हाजिर हो गई हूँ मैं आरजे शर्मीन। शर्मीन संग शामिल हो गए हैं आप और मेरे साथ आज कोई और भी शामिल हो गया है। हाँ जी, आप काफ़ी टाइम से इनकी आवाज़ सुन पा रहे हैं हमारे बाकी आरजेस के साथ और मेरा फर्स्ट टाइम है इनके साथ को होस्टिंग। हम वेलकम करते हैं रिद्धि को। हाय रिद्धि।
1: थैंक यू सो मच शर्मीन। हाय शर्मीन।
0: तो आज रिद्धि हमारे साथ होने वाली है पूरा 3 घंटा। तो आप लोग भी अगर मेरे साथ और रिद्धि संग शामिल हो गए हैं तो हाजिरी लगाइएगा 8657-6610718657-6577-6 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। सो रिद्धि, लव यू जिंदगी ये हमारा प्रोग्राम है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, किस तरह से है और यू नो इंसान कौन से ऐसे हालात होते हैं जब उसके दिल से निकलता है कि लव यू जिंदगी?
1: यार शर्मिन, जब एक ही वाक्य में लव और जिंदगी दोनों आ जाए तो कभी कभी लगता है कि ये कितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है ना यार, कि लव भी और जिंदगी भी। या फिर कभी कभी लगता है कि शायद ये लोगों के नजरिए पर निर्भर करता है कि लव और जिंदगी एक साथ पॉसिबल है क्या। बट हाँ है, तो हम और भी जानेंगे इस
0: बिल्कुल
1: बारे
0: में? बिल्कुल और भी जानेंगे। आज तो हम रिद्धि से ही पूछेंगे ये रिद्धि से जो गुत्थी है वो सुलझाएंगे कि लव यू जिंदगी आखिर क्या है और किस तरह से जो है इंसान सच में इस फीलिंग को जब एक्सपीरियंस करता है और कौन से ऐसे यू नो हालात होते हैं लाइफ में या कौन से ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिसको देख कर या जिसको एक्सपीरियंस करके लगता है लव यू जिंदगी। अभी के लिए आए एक और गाना केके की आवाज में ही हो जाए, बजरंगी भाई जान से। कौसर मुनीर ने इसे लिखा, प्रीतम की कॉम्पोजिशन, तू जो मिला।

0: अब जब बात कर रहे हैं हम लव और जिंदगी की, तो मैं एक बहुत ही प्यारा सा इंसिडेंट शर्मिन आपके साथ शेयर करना चाहूंगी।
1: जी बिल्कुल करेंगे हम, लेकिन उससे पहले हमारे लिसनर्स को बता दें इस गाने के बारे में। ये गाना आपने सुना शंकर महादेवन की आवाज लक बाय चांस इस फिल्म से, जावेद अख्तर साहब ने इसे लिखा, शंकर एहसान लॉय की कॉम्पोजिशन। आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो। शर्मिन और रिद्धि संग शामिल हैं आप और लव यू जिंदगी इस प्रोग्राम में। आज हमारे साथ रिद्धि जुड़ गई हैं, तो हमने सोचा रिद्धि से ही पूछते हैं कि उनकी नज़र में लव यू जिंदगी के क्या मायने हैं, या ऐसी कोई कहानी, ऐसा कोई इंसिडेंस जिससे वो गुजरी हैं या जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है और उनको लगा हो, उनको कहने का मन किया हो लव यू जिंदगी। तो रिद्धि बताइए हमें।
0: मेरी पहचान में ना एक बहुत ही प्यारा और होनहार बच्चा है। उसका नाम पार्थ है और उसकी माँ मिताली जी। उसकी परवरिश बेहद खूबसूरत तरीके से हो रही है।
1: वाह।
0: और वो इस बात का पूरा ध्यान रखती है कि उनका बच्चा सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं बल्कि मेंटली और फिजिकली भी हेल्दी रहे।
1: वाह।
0: ये जो चीज जिस पर से हमारा ध्यान हट रहा है, उसी का उनकी माता जी भरपूर
1: ध्यान रख रही है। वाह। हम जो पार्थ की कहानी है उसके बारे में और जानेंगे, और हमारे जो लिसनर्स हैं वो भी रिद्धि को वेलकम कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रणव शिंदे और संजय दर्शन जी, प्रमोद जी, विजेंद्र जी अकोला से, अरविंद कुलकर्णी जी और पंकज मोहर, फिरोज सिगनपुरिया जी, ये सब हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप भी अगर हमारे साथ शामिल हो गए हैं तो व्हाट्सएप करके हमें अपनी हाजिरी लगवाइएगा। 8657661071 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अभी के लिए वक्त हो गया है कुछ स्पॉट्स का, वो हम प्ले करेंगे और उसके बाद कुछ बहुत ही बेहतरीन गाने आपका इंतजार कर रहे हैं। सो कहीं नहीं जाइएगा, बने रहिएगा इसी फ्रीक्वेंसी 107.1 FM रेनबो पर, बिकॉज वी आर म्यूजिकली योर्स।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: ना तो नजरें हम चुरा रहे हैं, बस नजरें मिला रहे हैं रिद्धि के साथ, जो आज मेरे साथ को होस्टिंग कर रही है लव यू जिंदगी इस प्रोग्राम की। हाय रिद्धि।
1: हाय शर्मीन, वंस अगेन।
0: यस, आप सुन रहे हैं 107.1 एफएम रेनबो। शर्मीन और रिद्धि संग शामिल हैं आप। ये गाना आपने सुना जाने तू या जाने ना, इस फिल्म से बने दयाल गा रहे थे सतीश, सायोनारा दर्शना, श्वेता भार्गवी, ये सब उनका साथ दे रहे थे। अब्बास टायर वाला ने लिखा है, रहमान की कॉम्पोजिशन। और जी, लव यू जिंदगी में हम बात कर रहे हैं, और इनफैक्ट हमें रिद्धि एक स्टोरी बता रही है जो उन्होंने खुद एक्सपीरियंस की, एंड देन उनको ऐसे लगा, उनका मन किया ये कहने का कि लव यू जिंदगी। तो बताइए पार्थ की स्टोरी में आगे क्या हुआ।
1: जी, सो जैसे मैंने कहा कि बच्चे का नाम है पार्थ और उसकी मम्मी का नाम है मिताली जी, तो जैसे उन्होंने सोचा कि बच्चे के एकेडमिक्स तो ठीक है, बट साथ ही साथ मेंटली और फिजिकली भी वो सही होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। तो इसी सोच के साथ उन्होंने पार्थ को स्विमिंग जैसी एक्टिविटी से जोड़ा। अब आपको तो पता ही है कि स्विमिंग इज वन ऑफ द बेस्ट एक्टिविटी फॉर योर हेल्थ, और ये एक लाइफ सेविंग स्किल्स भी है। लोग कहते हैं कि जब आपकी उम्र भी हो जाए, आप बड़े भी हो जाए, आप बूढ़े भी हो जाए, तो ये कैसी स्किल है कि आप भूलते नहीं
0: है।
1: तो कम से कम खुद का तो बचाव हम कर ही लेंगे, और मेरे हिसाब से स्विमिंग हर बच्चे को सीखनी चाहिए। क्या कहती हो शर्मिन?
0: बिल्कुल बिल्कुल सीखनी चाहिए, बच्चे को भी और बड़ों को भी।
1: हाँ।
0: क्योंकि अगर आपसे कभी कोई ये सवाल पूछे, अक्सर यू नो ये पूछा भी जाता है कि अगर मैं पानी में डूब गया या कोई तीसरा पानी में डूब गया तो आप किससे बचाओगे, तो आप पे सामने वाला इस तरह से डिपेंडेंट हो कि हाँ आप बचा सकते हैं। आपको मुझे ही कोई बचा ले यही बड़ी बात है। तो ऐसा ना हो, तो बिल्कुल स्विमिंग बहुत अच्छी एक्टिविटी है, एक्सरसाइज है, और पार्थ की मम्मी ने बहुत सही किया है उनको इतनी अच्छी स्किल सिखा के। हम और इसके बारे में जानेंगे कि किस तरह से ये कहानी ऐसी हो गई और ऐसे लगा रिद्धि को कि हाँ ये इस तरह की, ये जो प्यारी इनकी बॉन्डिंग है उनको देखकर कहने का मन हो कि लव यू जिंदगी। बने रहिएगा आप इसी फ्रीक्वेंसी 107.1 एफएम रेनबो पर।

टेंशन के काले बादलों के बीच खुशियों का रेनबो घर सजाना हो तो सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: नीरज श्रीधर एंड तुलसी कुमार की आवाजें, प्रीतम की कॉम्पोजिशन, आपने सुना ये गाना बिल्लू इस फिल्म से। आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, लव यू जिंदगी, ये प्रोग्राम चल रहा है। रिद्धि और शर्मीन संग शामिल हैं आप, और रिद्धि हमें बता रही है पार्थ की कहानी।
1: पार्थ के लिए हॉबी, उसकी लाइफ सेविंग स्किल्स, ये इतनी ज्यादा जरूरी हो गई है शर्मिन कि वो खुद ब खुद वो करने लग जाता है।
0: Okay,
1: अब अच्छा। हमारी ही बात ले लो, या बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है कि माए पीछे पढ़ पढ़ के उसको पकड़ पकड़ के ऐसी सारी एक्टिविटीज में डालती है, बट इस बच्चे की खासियत ये है कि हंसते मुस्कुराते हुए वो इन कामों में अपने मन से जाता है। तो ये देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैंने देखी, जो सबसे पहले हमने नोटिस किया, अक्सर हम वो चीजें पहले से नोटिस करते हैं पर उसकी तारीफ हम बाद में करते हैं।
0: अच्छा,
1: वो है बिहेवियर। पार्थ का बिहेवियर,
0: बिल्कुल
1: हमेशा चेहरे पर मुस्कान रहती है, और बुक्स पढ़ने का तो इतना शौक है कि छोटी सी उम्र में ही वो गुजराती के साथ साथ हिंदी, इंग्लिश, मराठी और थोड़ी संस्कृत भी समझ लेता है, पढ़ लेता है। अरे मैं तो उसको देख के इतनी चकित हो गई शर्मिन कि मैंने कहा वाह, मैंने बोला तू मेरा आज से आइडल है कि मुझे तुझसे सीखना चाहिए कि तुझे इतना कुछ आता है। और मैं समझ गई सिर्फ एजुकेशन नहीं बल्कि बहुत खूबसूरत संस्कार दे रही है उनकी माँ। और उनके माता पिता से जब बात करती हूँ तो उनकी बातों से ही समझ आ जाता है कि वो कितना सकारात्मक एनवायरमेंट बनाना चाहते हैं
0: बच्चे के
1: पार्थ के लिए, बच्चे के लिए।
0: बिल्कुल। और ये मतलब यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये मुझे लगी कि वो बच्चा ये सारी चीजें खुशी से कर रहा है ना, उस पर कुछ प्रेशर
1: नहीं
0: है, और वो जो चीजें कर रहा है उसमें वो खुश है। और ये बहुत ज्यादा अहम बात है कि आपका बच्चा, जो भी आप उसे एक्टिविटी में डालते हैं, उसको वो एंजॉय करे, है ना। और उसको आप इस तरह से नहीं कि आपको कुछ एक अपने विश लिस्ट में वो बॉक्सेस टिक करवाने हैं अपने बच्चों के जरिए। कभी कभी होता है ना पेरेंट्स की अपनी कुछ इच्छाएं या राइट वो पूरी नहीं हो पाती तो सब अपने बच्चे से, लेकिन ये देखिएगा कि अगर आप इस तरह की एक्टिविटीज में डाल भी रहे हैं तो वो बच्चे का इंटरेस्ट कितना है, या उसका जो दिन का पूरा स्केड्यूल है उसमें वो रेस्ट भी ले, है ना,
1: और
0: वो
1: उसे उसकी जिंदगी से लव हो
0: राइट। यही तो हमारा आज पूरा मुद्दा है कहने का। इसके बारे में और बात करेंगे हम। आपको बस मुझे यही कहना है, मुझे और रिद्धि को, कि रह जा रहे, क्योंकि अभी एक और हमारी लिंक आनी है। उसके बाद हम बात करेंगे, उस लिंक में हम बात करेंगे कि किस तरह से ये जो पूरी कहानी है पार्थ की वो हमें सिखाती है जिंदगी को लव यू कहना। जावेद अली, सुनिधि चौहान की आवाज़ें हैं, गोलमाल फन अनलिमिटेड से सुनेंगे आप ये गाना। विशाल ददलानी कुमार ने इसे लिखा, विशालन शेखर की कॉम्पोजिशन।

0: बिल्कुल रह जा रहे इसी फ्रीक्वेंसी पर रह जा रहे 107.1 FM रेनबो ट्यून इन किया है आपने लव यू जिंदगी ये प्रोग्राम चल रहा है और ये गाना आपने सुना गोलमाल से. आज रिद्धि शर्मीन संग शामिल है और लव यू जिंदगी में हम बात कर रहे हैं पार्थ की और किस तरह से उसके पेरेंट्स ने उसकी परवरिश की है और आगे हमें रिद्धि बताएंगी.
1: हाँ शर्मिन, जब मैं ऐसे बच्चों को देखती हूँ और ऐसी माता की सोच को समझती हूँ, उनके पिता की बातों को सुनती हूँ, तो ये बात तो भाई समझ में आ गई कि ग्रोथ जो होती है ना असली इंसान की या असली जीवन जिंदगी में, ग्रोथ सिर्फ मार्क्स से नहीं होती बल्कि बिहेवियर, ग्रैटिट्यूड और अच्छे संस्कारों से दिखाई देती है. और शायद यही चीजें हमें अपनी जिंदगी से प्यार करना सिखाती हैं, क्योंकि देखिए प्यार, मोहब्बत, प्रेम, चाहे हम इसे किसी भी भाषा में कहें, लेकिन जब ये शब्द हमारे मुंह से निकलता भी है ना, तो चेहरे पर स्माइल आ जाती है. हाँ, माना कि जब इनको हम निभाने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा परिश्रम होता है, लेकिन लोग कहते हैं ना वो परिश्रम भी मीठा लगता है क्योंकि आपको जिंदगी से प्यार होने लगता है. तो ये तो बात है भाई. और इनकी बात सुनकर शर्मिन, मैं डेफिनेटली कहूंगी कि ऐसे माता पिताओं को, ऐसे बच्चों को मेरा खूब खूब अभिनंदन है. और उनको और उनकी कहानी को सुनकर और जानकर हम दोनों क्या कहेंगे?
0: लव यू जिंदगी. बिल्कुल लव यू जिंदगी कहने का मन होता है जब भी हम इस तरह के लोगों से मिलते हैं और उनकी कहानियों को देखते हैं अपने सामने. और बहुत ही प्यारी कहानी पार्थ की हमें बताई मिथाली जी, उनकी मम्मी किस तरह से उनकी परवरिश कर रही है रिद्धि ने हमें बताया. और इसी के साथ लव यू जिंदगी को यहीं रोकने का वक्त हो चला है. आपको बता दें 6:05 पर आप नागपुर सेंटर से मराठी में समाचार सुन पाएंगे और 6:15 पर अंदाज़ बयां की महफिल शुरू हो जाएगी, तो उसमें आइएगा ज़रूर. अभी के लिए तो लव यू जिंदगी से जाते जाते आएँ, आपको सुनाते हैं रेस फिल्म का ये गाना. शान, सुनिधि एंड केके की आवाज़ें हैं, समीर ने इसे लिखा, प्रीतम की कॉम्पोजिशन. कहीं नहीं जाइएगा, बने रहिएगा इसी फ्रीक्वेंसी 107.1 FM रेनबो पर, बिकॉज वी आर म्यूजिकली योर्स.

0: सबके अलग है अंदाज,
1: कोई मजाकिया
2: तो किसी की मदहोश कर देने वाली आवाज,
3: कोई लुभाए शेरो शायरी से
2: तो सुकून से भरी किसी की आवाज,
4: जो मेरी मंजिलों को जाती है तेरे नाम की कोई सड़क है।
1: अलग अलग अदाएं हैं सबकी खास, यही तो है FM रेनबो का राज।
0: 107.1 म्यूजिकली योर्स, दिल से दिल तक।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सबका फिर से स्वागत है, जहां मैं आरजे रिद्धि और मेरे साथ है शर्मीन, और हम इस शो में अंदाज़े बयां में शेर और शायरी की जो शुरुआत है वो कर चुके हैं। तो भाई मेरी तो बारी हो गई, मैंने तो एक बहुत ही अच्छा शेर सुना भी दिया, और जब हम सुन रहे थे और बातें कर रहे थे तो हम उस शेर के बारे में बात कर रहे थे कि भाई ऐसा क्या है जो दो लफ्जों में, दो लाइनों में हमें इतना बता दिया। तो शर्मीन, आप अब आपकी बारी, आप कुछ सुनाइए।
2: बिल्कुल सुनाते हैं। आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, अंदाज बयां में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इसका फॉर्मेट ही ऐसा है कि इसमें गजलें, कवालियां, सूफी सॉन्ग्स, एल्बम सॉन्ग्स प्ले होते हैं और हम कुछ अशार लेकर आते हैं, आपको सुनाते हैं। रिद्धि ने सलीम अहमद का बहुत ही अच्छा शेर हमें सुनाया, और अब मैं आपको सुनाती हूँ बशीर बद्र साहब का एक शेर, जो वो लिखते हैं कि इसीलिए तो यहाँ अब भी अजनबी हूँ मैं।
1: क्या है?
2: इसीलिए तो यहाँ अब भी अजनबी हूँ मैं, तमाम लोग फरिश्ते हैं, आदमी हूँ मैं।
1: क्या बात है! ये तो मुझे एकदम सरकाज़म लगा कि क्या बात है भाई, सब फरिश्ते हैं, मैं आदमी हूँ। अब आप सोचिए कि आप लोग किस कैटेगरी में आते हो, क्या आप फरिश्ते हो या फिर आदमी हो?
2: मतलब इसमें कहने का मतलब ये है कि इंसान जो है वो गलतियों का पुतला है ना, और फरिश्ते ऐसे माने जाते हैं कि उनसे गलतियां नहीं होती। तो जो लोग हैं वो कभी कभार ऐसा बिहेव करते हैं, और यू नो, आपने हमने हमेशा ऐसा देखा होगा कि जब आपकी गलती होती है या कभी गलती नहीं भी होती तो भी इस तरह से वो पोर्ट्रे करेंगे कि हाँ नहीं, बस तुम में कुछ अच्छाई नहीं है, तुम ऐसे ही हो वैसे। तो वो एक टाइम बाद इंसान ये कहने पर मजबूरी हो जाता है, हाँ भाई तुम फरिश्ते हो, हम आदमी
1: हैं। शर्मीन, इस बात से ना मुझे ये समझ आया कि मैं कहूँ एक बात कि आदमी वो है जो गलती करता है और गलती करने पर हाथ ऊपर नहीं उठाता, हाँ भाई गलती की है, आदमी हूँ, फरिश्ता नहीं तो प्लीज।
2: तो यही कहना चाह रहे हैं बशीर बद्र साहब इस शेर में। ऐसे और अशार हम आपको सुनाएंगे, लेकिन अभी के लिए गाना आपको सुना दें। कलयुग फिल्म का ये सॉन्ग है, जिया धड़क धड़क, रात फतेह अली खान साहब की आवाज़ है, सैयद कादरी साहब ने इसे लिखा, रुहैल हयात एंड फैसल रफ़ी की कॉम्पोजिशन।

0: बात निकली है तो बड़ी दूर तक जाएगी।
1: पगली जीपीएस फॉलो करना, नहीं तो गुम हो जाएगी।
0: अगर गुम हो भी जाओ तो कोई बात नहीं।
1: बिल्कुल, क्योंकि पंछियों के पास भी कहाँ होते हैं नक्शे, फिर भी वो ढूंढ लेते हैं अपनी मंजिलें।
0: हाय, ये है एफएम रेनबो 107.1। यूं ही खट्टी मीठी बातों से जीत लेंगे आपका मन,
1: क्योंकि हम हैं म्यूजिकली यर्स।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: बिल्कुल म्यूजिकली योर्स, आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो. अंदाज़ बयां की महफिल सजी हुई है और शर्मीन के साथ रिद्धि आज शामिल है.
1: और अंदाज़ बयां जब मैं सुनती हूँ तो मुझे कई बार अलग अलग लोगों की शायरियाँ याद आती है और उनके तरीके याद आते हैं.
0: बिल्कुल.
1: अब जब अंदाजे बयां है तो अंदाज भी तो सबका अलग अलग होता होगा.
0: वाह.
1: कोई ना कोई कोई शब्दों को बड़ा खींच कर बोलता है. कोई पहले ऊंचा बोलेगा फिर थोड़ा जाते जाते धीमा होते जाता है. तो मतलब अंदाज इतने अलग अलग है और हमारे लिसनर्स के लिए कितना ज्यादा एक्साइटिंग और एंटरटेनिंग हो जाता है कि अरे वाह इसने इस तरह से बोला, चलो ये थोड़ा रिदमेटिक बोल रही है, राइम के साथ बोल रही है, तो चलो फिर इसी बात में शर्विन एक और शेयर
0: हो जाए. बिल्कुल बिल्कुल. और तुमने इतनी अच्छी बात, मतलब ये जो अंदाजे बयां शो का नाम है उसको इतने अच्छे से तुमने डिस्क्राइब किया है ना कि हर किसी का अंदाज निराला होता है. और आप लोग अगर रेनबो का, एफएम रेनबो का हमारे आरजेएस का पैनल भी देखेंगे तो हर कोई जो है वो डिफरेंट तरीके से शो करता है और इतनी सारी वैरायटीज आवाज़ों की, स्टाइल्स की और अंदाज, जिस अंदाज से बयां करते हैं हर कोई, वो मिलती है, वो कहीं और किसी और रेडियो स्टेशन में आई डोंट थिंक मिलती होगी, है ना. हर दिन एक नई आवाज़. सो जहाँ शेर की बात है तो अब मैं आप लोगों को सुनाती हूँ मलिकज़ादा मंजूर अहमद का शेर, जो कहते हैं कि ख्वाब का रिश्ता हकीकत से न जोड़ा जाए, ख्वाब का रिश्ता हकीकत से न जोड़ा जाए, आईना है इसे पत्थर से न तोड़ा जाए.
1: हाय हाय हाय, ये तो आउच वाली फीलिंग हो गई कि भाई आईना है इसे पत्थर से ना तोड़ा जाए, क्योंकि आईना तो हमें असलियत बताती है ना.
0: बिल्कुल. और यहाँ पे एक वो भी चीज है कि ख्वाब को जो है वो आईने की तरह बताया गया है कि उसको हकीकत के पत्थर से मारने की जरूरत नहीं है. मैं उस ख्वाब में रहना चाहता हूँ, उस फीलिंग में रहना चाहता हूँ, तो मुझे रहने दो.
1: सच में ऐसे कई लोग है शर्मीन जिन्होंने अपने इर्द गिर्द एक अपने ख्वाबों की दुनिया बनाई हुई है. उनको पूरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं. और वो तो कहते भी है, वार्निंग देते हैं, भाई मेरे ख्वाबों की दुनिया में अगर आना है तो ख्वाब बनकर आना वरना मत आना.
0: वो कहते हैं ना, Delilu is the Salilu. फिर ले आया दिल. आपको सुनाते हैं बर्फी इस फिल्म से. रेखा भारद्वाज की आवाज है, सईद कादरी ने इसे लिखा, प्रीतम की कॉम्पोजिशन.

0: आप सुन रहे हैं अंदाज़े बयां का ये शो, और मेरा अंदाज़ और शर्मिन का अंदाज़ तो आपने सुन ही लिया है। और जब मैंने कहा था कि अंदाज़ मतलब अलग अलग तरीके से बोलना, अलग अलग टोन में बात करना, और जहां बात करते करते मेरा खुद का टोन चेंज हो जाता है, और कभी कभी तो आपको पता है जब आप किसी सामने वाले का टोन सुनते हैं तो आपको हंसना भी आ जाता है।
1: राइट।
0: और किसी किसी के टोन में तो वो जादू है जिसको लगता है बस सुनते ही जाए, सुनते ही जाए।
1: वाह,
0: मखमली आवाज जिसे हम कहते हैं ना, कि बात करते करते आप अपने आवाज का बेस कैसे बढ़ाए, और बात करते करते आप अपने आवाज में वो जो चंचलता है वो कैसे लाए। तो अंदाज मतलब वही है कि भाई आप जैसे चाहे अपने आवाज के साथ खेल सकते।
1: नाइस, वाह क्या बात है। रिद्धि हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आज अंदाज़े बयां में। अंदाज़े बयां क्या, इनफैक्ट लव यू जिंदगी से ही मेरा और उनका साथ है। शर्मीन और रिद्धि संग शामिल हैं आप अंदाज़े।

0: बयां की इस महफिल को यहीं रोकने का वक्त हो चला है, लेकिन जैसे कि आप सभी जानते हैं इस शो का जो तरीका स्पेशली अगर मैं कर रही हूँ तो ऐसे ही रखती हूँ कि गज़लें, कवालियाँ, सूफी सॉन्ग्स, एल्बम सॉन्ग्स प्ले हों और अपनी तरफ से कुछ शेर व शायरी लेकर आए। तो जाते जाते रिद्धि सरवत हुसैन का एक शेर सुनाती हूँ, ठीक है
1: जी।
0: वो लिखते हैं कि जिसे अंजाम तुम समझती हो इब्तिदा है किसी कहानी की।
1: वाह,
0: तो ये किस कहानी की इब्तिदा है वो भी आपको बता दें, हम तुम की इब्तिदा होने वाली है थोड़े ही देर में, लेकिन उससे पहले 7 बजे आप हमारे न्यूज स्टूडियो से मराठी में समाचार सुन पाएंगे और 7:10 पर हम तुम ये प्रोग्राम लेकर मैं और रिद्धि हाजिर हो जाएंगे जिसमें आपकी पसंद के गाने प्ले होते हैं। लेकिन आज हम एक थीम के साथ आए हैं तो उसी थीम के अकॉर्डिंग आपने अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट भेजनी है। अभी के लिए रिद्धि हम अंदाजे बयां से जाते जाते क्या सुनेंगे? ए दिल है मुश्किल से आएगा ये गाना।
1: अरे वाह वाह, सच में मुश्किल है थोड़ा दिल
0: मुश्किल
1: के लिए।
0: लेकिन ये अमित मिश्रा और शिल्पा राव की आवाजें थोड़ा सा आसान बना देंगी इस गाने के साथ। बुलिया ये सॉन्ग सुनेंगे आप, अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे लिखा, प्रीतम की कॉम्पोजिशन। बने रहिएगा इसी फ्रीक्वेंसी 107.1 FM रेनबो पर, बिकॉज वी आर
1: म्यूजिकली
0: योर्स।

0: Lani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: नमस्ते और आप घड़ी में बज रहे हैं 7:11 और हमारा प्रोग्राम हम तुम शुरू हो चुका है, जहां आप अपनी सखी आरजे रिद्धि और आरजे शर्मिंग के साथ हैं। और हमने वैसे तो काफी सारी बातें की है, लेकिन अब तो भाई आपके इंटरेस्ट की भी बातें होंगी।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: आपने जो गाना कहा है हम उनको भी सुनाएंगे, उनको भी बजाएंगे।
2: राइट, बिल्कुल, हम तुम ये प्रोग्राम में आपका स्वागत है और बिल्कुल आपका चहीता प्रोग्राम है ये, जिसमें जो है आपकी पसंद के गाने प्ले होते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आज इस प्रोग्राम में हम एक थीम के साथ आए हैं, क्योंकि रिद्धि आज नेशनल न्यूमरेसी डे है, नंबर्स की सारी कहानी है। तो हमारे लिसनर्स से हम ऐसे गाने मांग रहे हैं जिन गानों में नंबर्स आए हों, नंबर्स मेंशन हों।
1: ठीक है, इंटरेस्टिंग यार।
2: तो ऐसे गाने आप सभी ने रिक्वेस्ट करने हैं, आपके फेवरेट सॉन्ग्स जिसमें जो है नंबर्स मेंशन किए गए हों। पहला गाना तो मैं आप सभी के लिए लगा ही देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है काफी सारे लोग इस गाने की रिक्वेस्ट करेंगे, और वो है तेजाब फिल्म से 1 2 3 4 सारे गिन लो। अलका याग्निक की आवाज में आ रहा है ये गाना, जावेद अख्तर साहब ने इसे लिखा, लक्ष्मीकांत जी प्यारेलाल जी की कॉम्पोजिशन। और आप अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, आपको नंबर बता दें 8657661071 पर, 8657661071 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ध्यान रहे कि जो भी गाना आप भेजें उसमें नंबर्स आते हों। ठीक है,
3: नमस्कार,
4: नमस्कार।
3: कहिए क्या सुनेंगे आप?
4: अरे पहले ये कहिए कहाँ थी आप?
3: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
4: कौन है वो?
3: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें

0: जी राम लखन से सुना आपने ये गाना माई नेम इज लखन, जिसमें भी नंबर्स आए हैं ए जी ओ जी 1, 2 का 4 मोहम्मद अजीज, अनुराधा पंडवाल, नितिन मुकेश की आवाजें थी, आनंद बख्शी साहब ने इसे लिखा, लक्ष्मीकांत जी प्यारे लाल जी की कॉम्पोजिशन, और ये गाना आपने सुना दत्तात्रेय जी और अजय सकरे जी की रिक्वेस्ट पर। आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, शर्मीन और रिद्धि संग शामिल हैं आप हम तुम इस प्रोग्राम में। आज हमने आपसे मांगे हैं ऐसे गाने जिसमें आए हों नंबर्स, और क्यों मांगे रिद्धि ऐसे गाने?
1: आज न्यूमरेसी डे है।
0: यस बिल्कुल, आज नेशनल न्यूमरेसी डे है, तो आपने अपनी फेवरेट सॉन्ग्स रिक्वेस्ट करने हैं, लेकिन ऐसे गाने हों जिसमें आए हों नंबर्स। और अब बिना किसी देरी के अगले दो गानों के बारे में आपको बता दूं, एक तो गाना आएगा मुझसे शादी करोगी इस फिल्म से, जीने के हैं 4 दिन। हाँ जी, प्रणव शिंदे जी की रिक्वेस्ट पर आ रहा है ये गाना। और एक गाना कौन सा है?
1: रॉबिन ने फरमाइश की है 10 बहाने लेकर।
0: 10 बहाने करके ले गया दिल, तो ये दो गाने आने वाले हैं 10 इस फिल्म से आएगा गाना। लेकिन अभी के लिए मैं आपको सुनाती हूँ प्रणव शिंदे जी की रिक्वेस्ट पर ये गाना। मीनवाइल आप भी अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट भेज कर रखिएगा 8657661071, 8657661071, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अभी के लिए सोनू निगम, सुनिधि चौहान की आवाजें हैं, समीर ने इसे लिखा, अनु मलिक की कॉम्पोजिशन, मुझसे शादी करोगी इस फिल्म से आ रहा है ये गाना।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: नमस्ते, आप सुन रहे हैं हम थुम का कार्यक्रम और जहां आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं नेशनल न्यूमरेसी डे और आपको कहा गया है कि आपको वैसे गाने देने हैं जिनमें नंबर्स अंकों का इस्तेमाल हुआ हो। और वाकई क्या एक एक से आपने गाने दिए हैं, मतलब अगर किसी की नंबर की अगर गिनती भूल जाए या कोई भूल जाए ना तो वो ये गाने सुने तो आ जाए उनको याद कि 12:30, 12:15, 1, 2, 3 क्या बात है। क्या खूब रिक्वेस्ट भेजी है आप सभी ने।
2: बिल्कुल रिद्धि और शर्मीन संग शामिल हैं आप, हम तुम इस प्रोग्राम में ऐसे ही नंबर्स वाले गाने हमने आपसे आज मांगे हैं। और जहां आपने 12:15 की बात की रिद्धि, तो अब जो नेक्स्ट गाना आ रहा है वो 12:15 के ही बारे में है। पिंटो की रिक्वेस्ट पर आएगा ये गाना। और आपको भी अगर कोई गाना सुनना है ऐसा गाने जिसमें जो है नंबर्स आए हों, तो आपको हमारा नंबर बता दें जिस पे आपने अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट भेजनी है, 8657661071, 8657661071 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अभी के लिए आपको सुनाते हैं हम सलाम नमस्ते इस फिल्म से, कुणाल गांजावाला, सुनिधि चौहान की आवाजें हैं, जयदीप सहानी के अल्फाज, विशालन शेखर की कॉम्पोजिशन। पिंटो की रिक्वेस्ट पर आ रहा है ये गाना। इसके बाद हम प्ले करने वाले हैं संजय दर्शन जी की रिक्वेस्ट पर कौन सा गाना, उसके लिए आपने बने रहना है इसी फ्रीक्वेंसी 107.1 FM रेनबो पर, बिकॉज वी आर म्यूजिकली योर्स।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: वेलकम बैक और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां हमारा प्रोग्राम चल रहा है हम तुम। जब हम बात करते हैं कि हमने ये किया तुमने ये किया, मतलब यहां पर बात चल रही है अलग अलग गानों के जरिए और साथ ही नंबर्स को भी इंक्लूड कर दो भाई, क्योंकि आप सबको पता है हमारे जीवन में नंबर्स का भी बहुत महत्व है। और आजकल तो भाई लोग जो गाड़ियां भी खरीदते हैं ना, तो वो नंबर देख कर लेते हैं, तो फिर अब तो गाने में जब नंबर बजे तो मजा ही आ जाए।
1: बहुत मजा आ रहा है। और मैं बता दूं आपको, हम तो इस प्रोग्राम में शर्मीन और रिद्धि संग शामिल हैं आप, और बहुत कम वक्त रह गया है हमारे पास, तो हम कोशिश करेंगे कि जो ऑलरेडी सॉन्ग रिक्वेस्टें आई हैं वो प्ले की जाएं। और थोड़ी देर पहले आपने सुना दो दिल मिल रहे हैं परदेस इस फिल्म से, संजय दर्शन जी ने उस गाने की रिक्वेस्ट की थी और उसमें भी नंबर थे, दो दिल है ना। तो अब अगले गाने की रिक्वेस्ट आई है राकेश माथुर जी की तरफ से, जो बड़े नाराज से हैं कि कह रहे हैं मेरा गाना ही नहीं प्ले किया आपने इतने दिनों बाद, मैं खुद इतने दिनों बाद आई हूँ राकेश जी। तो खैर उनका गाना हम प्ले कर देते हैं, और उसके बाद आने वाली है अतीन्द्र जोशी जी की रिक्वेस्ट, तो आपने बने रहना है इसी फ्रिक्वेंसी 107.1 FM रेनबो पर। अभी के लिए राकेश माथुर जी की रिक्वेस्ट पर आपको सुनाते हैं तपस्या इस फिल्म से ये गाना। किशोर कुमार आरती मुखर्जी की आवाजें हैं, MG हशमत ने इसे लिखा, रविंद्र जैन जी की कॉम्पोजिशन, दो पंछी दो तिनके।

0: क्या बात है, मतलब कुछ गाने होते हैं ना जो हम प्ले करना चाहते हैं रिक्वेस्ट आर में ही, हम चाहते हैं कि हम भी प्ले करें, लेकिन आपकी तरफ से उस तरह के गानों की रिक्वेस्ट नहीं आ रही होती है। लेकिन मैं अतिंद्र जोशी जी का तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगी कि बहुत बहुत ही प्यारा गाना आपने रिक्वेस्ट किया है, और ये गाना था मिर्ज़िया इस फिल्म से, नूरान सिस्टर्स, के मोहन की आवाज़ें थी, गुलजार साहब ने इसे लिखा, शंकर एहसान लॉय की कॉम्पोजिशन थी, और आज हम तुम इस प्रोग्राम में हमने आपसे मांगे ऐसे गाने रिद्धि
1: जिसमें नंबर्स यानी कि अंकों का जिक्र हो, और आपने हमें वाकई बहुत बहुत अच्छे गानों का कलेक्शन भेजा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और इसी के साथ हम तुम इस प्रोग्राम को यहीं रोकने का वक्त हो चला है, मतलब कि मेरे और रिद्धि के जाने का टाइम हो गया है। 8 बजे आप इंग्लिश प्रोग्राम रॉक विद जॉक सुन पाएंगे, तो उसके लिए आपने बने रहना है इसी फ्रीक्वेंसी पर। और अब रिद्धि आपसे कब दोबारा मिलती है उनसे पूछते हैं।
1: तो हमारी दोबारा मुलाकात होगी फ्राइडे को, सेम शो टाइम 5 to 8, और उसमें ऐसे

0: ये बहुत अलग अलग बातें हम करेंगे जिसमें बहुत मजा आने वाला है.
1: बिल्कुल, लेकिन रिद्धि के साथ मैं नहीं होंगी, कोई और आरजे होगा. मेरी और आपकी मुलाकात बिल्कुल ही आपको वेट नहीं करना है, मैं कल सुबह ही आ रही हूँ आपसे मिलने. हाँ जी, कल 11 से 2 का जो शो होता है उसमें आप सभी से मुलाकात होगी. और जाते जाते हम रवीश जी की रिक्वेस्ट पर ये गाना आपको सुनाते हैं. ये गाना आ रहा है कल हो ना हो, इस फिल्म से अलका याग्निक, शान की आवाजें हैं, जावेद अख्तर साहब ने इसे लिखा, शंकर एहसान लॉय की कॉम्पोजिशन. और ये गाना उन सभी लोगों के लिए जिनकी आज सॉन्ग रिक्वेस्टें पूरी नहीं हो पाई. तो जी, इसी के साथ अब जा रही है रिद्धि और शर्मीन. ख्याल रखें अपना सामईन.

0: And that was the Pointer Sisters from their breakout album, which was released in 1983. A massive crossover hit that blended pop, new wave and R&B in a way that felt completely fresh. That was Jump for Your Love by the Pointer Sisters. And before that, you heard Denise by Debbie Harry, a fun and slightly lesser known one. And it is her cover of Denise, originally a doo-wop hit by Randy and the Rainbows from 1963. And Debbie Harry went ahead and gave it a new spin. And Blondie were one of the most
1: lovely Nigam. भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने दुर्लभ खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिन में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच जारी। अब समाचार।

0: विस्तार से। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
1: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
0: सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया।
1: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूँ।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। श्री सिंह ने रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: 12 वर्षों के अंदर ही हम 40,000 करोड़ से ज्यादा का इस समय हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो 2 साल के अंदर 50,000 करोड़ के एक्सपोर्ट, डिफेंस आइटम्स के एक्सपोर्ट की जानकारी आपको मिल जाएगी। और हमारी गवर्नमेंट के रहते डिफेंस सेक्टर में एक मेजर चेंज आया है। भारत की पॉलिसी आज रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव है। और मेरा भी यह व्यक्तिगत रूप से मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की किसी कीमत पर किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा और इसी सोच के साथ भारत इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को तेजी के साथ बढ़ावा दे रहा है।
0: रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा। वहां से उन्हें देश से निकालने के लिए BDR के साथ इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने इसे नए तरीके को पहचानो हटाओ और देश से निकालो बताया। गुजरात सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का समर्थन किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने आज गुजरात के गांधीनगर में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा की। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि विधेयक को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए।
2: हमने आज JPC को गुजरात सरकार की ओर से खास तौर पे ये नम्र निवेदन किया है कि वन नेशन वन इलेक्शन जल्द से पास हो, सभी राज्य के नागरिकों को एक समान हित मिले, सभी लोगों के काम जल्द हो पाए, मशीनरी सरकारी जो है उसका कम से कम समय बिगड़े, वही हित में आज हमने वन नेशन वन इलेक्शन को हमने हमारा सहयोग दिया है और हमने ये खास तौर पे विनती की है इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए।
1: इस बीच कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NEET UG पुनर्परीक्षा के सुरक्षित निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर चिंता व्यक्त की गई। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में 5 आरोपियों को 2 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने एक अन्य आरोपी की CBI हिरासत भी बढ़ा दी है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने जम्मू कश्मीर में एक सशक्त नवाचार इकोसिस्टम के निर्माण के लिए 500 नई अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। नई लैब अटल नवाचार मिशन के व्यापक सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। ईरान संघर्ष के कारण वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष भारत की विकास दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। इससे भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अर्थशास्त्री इंगो पिटले ने कहा कि भारत की मजबूत उपभोक्ता मांग, सार्वजनिक निवेश और सेवा निर्यात में वृद्धि इसकी अर्थव्यवस्था को सहारा दे रही है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 118 अंक बढ़कर 75,318 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 41 अंक की बढ़त के साथ 23,659 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 30 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी ₹96.83 पर बंद हुआ।
1: और अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी कल तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कल राजधानी में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग के अनुसार कल दिल्ली में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पिछले 24 घंटों में राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि कल दिन के समय राष्ट्रीय राजधानी में 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है। सौम्य के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम में भारी वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि ये राष्ट्र को एकजुट करने का सशक्त माध्यम है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से हो रहा है। फिलहाल बारिश के कारण मैच रुका हुआ है। मैच रुकने तक मुंबई इंडियंस ने 8 ओवर में 4 विकेट पर 57 रन बना लिए थे। उधर मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 में आज अश्मिता चलिहा, देविका सिहाग और मालविका बंसोड महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 7 मई से बढ़ाकर 31 मई कर दी है। प्रतियोगिता 3 श्रेणियों में आयोजित की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वीसी प्रमोद विद द न्यूज एट 9। The headlines. India and Italy agree to elevate ties to special strategic partnership. Both sides ink 15 agreements to boost bilateral cooperation in key areas including critical minerals, defense and agriculture. Prime Minister Narendra Modi receives FAO's highest honor, Agricola Medal, dedicates award to farmers of India. West Bengal government announces immediate start of deportation proceedings against illegal Bangladeshi infiltrators under Citizenship Amendment Act. India to remain world's first growing major economy with 6.4% growth this year despite West Asia conflict, says UN report. IMD issues red alert for severe heatwave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for the next 2 to 3 days. And in IPL cricket, match between hosts Kolkata Knight Riders and Mumbai Indians underway at Eden Gardens. India and Italy today finalized 15 outcomes across diverse sectors. The agreements were signed.

0: signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. The outcomes mark the elevation of bilateral relations to a special strategic partnership. Both sides also inked several memorandums of understanding to deepen cooperation in key areas including critical minerals, defense, agriculture, Ayurveda, science and technology, maritime transport and ports. India and Italy also agreed to strengthen coordination against tax crimes, money laundering and terror financing. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said the two sides deliberated extensively on enhancing bilateral ties.
1: पिछले लगभग साढ़े तीन वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
0: Mr. Modi said India-Italy Joint Strategic Action Plan 2025-29 will provide a practical and futuristic framework for bilateral ties. He said both sides are working towards establishing an India-Italy Innovation Center and noted that the India-Italy Defense Industrial Roadmap has opened new avenues for co-development and co-production in the defense sector.
1: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
0: Mr. Modi stressed that India and Italy are united in viewing terrorism as a serious threat to humanity and underlined the need for strong action against terror financing networks.
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
0: Speaking on the occasion, Italian Prime Minister Meloni emphasized the importance of ensuring freedom of navigation in the Indo-Pacific and strengthening cooperation across key sectors.
2: Italy and India share a joint vision on many of the huge challenges of our time, rules, economic security, the resilience of the value chains, the promotion of peace, inclusive development. It is extremely important to have freedom of navigation in the Indo-Pacific sector is where we share the same vision of a free, inclusive and open Indo-Pacific.
0: Prime Minister Modi also called on Italian President Sergio Mattarella and held discussions on further expanding the bilateral partnership in areas such as trade, technology, clean energy and culture. Later in the day, Prime Minister Modi was conferred the prestigious Agricola Medal by the Food and Agriculture Organization FAO at its headquarters in Rome. The medal was presented by FAO Director General Chu Dongyu. Receiving the award, Mr. Modi dedicated the honor to India's millions of farmers, livestock rearers, fish farmers, agricultural scientists and workers. Speaking on the occasion, the Prime Minister said the award reflects India's unwavering commitment to food security, sustainable development and human welfare.
1: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूँ।
0: The Agricola Medal is the highest honor conferred by the Director General of the FAO. It is awarded to distinguished world leaders and individuals for exceptional and long-term contributions to global

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
0: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला पदक से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान भारत के किसानों, मछुआरों, वैज्ञानिकों और कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य कर्मियों के योगदान की पहचान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में असम में 4000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव कार्यों की समीक्षा की। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। कोलकाता ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, प्रोग्राम रंगे महफिल में आप सभी का स्वागत है और इस खूबसूरत सफर में भी आप हैं अपनी दोस्त आरसी यानी रेखा चौधरी के साथ। तो चलिए, देर किस बात की, आगाज तो करना ही है और आगाज एक खूबसूरत गीत या गजल से हो तो बस बात बन जाए, है ना। तो चलिए अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत आवाज के साथ, और ये आवाज हमेशा दिलों में बसती रही है, बसती रहेगी, और सच में इस आवाज में कोयल की खनक सुनाई देती है।

जी हाँ दोस्तों, वो खतों का सिलसिला भी कितना खूबसूरत होता होगा ना, जब इंतज़ार रहता होगा कि हमारा ख़त कब दूसरे इंसान तक पहुँचेगा और दूसरा इंसान भी बेसब्री से उस ख़त का इंतज़ार करता होगा, और जब जब वो ख़त उनके हाथों में आता होगा तो दिल कितना ज़ोरों से धड़कता होगा। लेकिन उस टाइम पर उनकी वैल्यू थी, यानी कि खतों की वैल्यू थी, आज भी है नो डाउट, लेकिन किंतु परंतु एक बात है कि ये मैसेजेस जो आते हैं ना आपके फटाक से मेरे पास तक, और मैं फटाक से उन्हें ऑन एयर कर देती हूँ और झटक से आपका नाम भी ले लेती हूँ, ये नहीं हो पाता अगर ये दौर ना होता। और वो खतों का दौर

पीछे ना जाता। तो ये मैसेजेस का दौर कहाँ से आता है ना, समझ रहे ना। हाँ, कभी कभी मैं अपनी बातों को जल्दी जल्दी इधर से उधर, उधर से इधर कर देती हूँ, तो कई लोगों की समझ में आती है, कई लोगों की समझ में नहीं आती है। अगर समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आई है तो मैं समझाने के लिए यहाँ पर हूँ दोस्तों। सबसे पहले मेरे पास जो मैसेज आया वो लिखते हैं, गुड इवनिंग रेखा जी, रंगे महफिल लाजवाब चल रहा है, हमने सनम को खत लिखा, बेहद खूबसूरत कार्यक्रम चल रहा है और ये गीत भी बहुत ही सुंदर है। आगाज अच्छा है तो अंजाम भी अच्छा ही होगा, बिल्कुल। उन्होंने एक फरमाइश कर डाली है, तो दोस्त ये तो आपको पता ही है कि फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है, लेकिन फिर भी खूबसूरत जो गज़लें होती हैं ना, गीत होते हैं, उन्हें हमेशा मैं चलाने की कोशिश करती हूँ। और उन्होंने प्रेजेंटेशन की भी काफ़ी तारीफ की है, और ये तारीफ की है किशन, वंजुनी, नीलम, स्वाति और किशु, रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से। एक और हमारे दोस्त हैं वरुण इंदौर से, वो भी हमें मैसेज कर रहे हैं, तो वो लिखते हैं, यही गर्मी के मौसम में सावन के गीत तो चलते ही हैं, लेकिन किंतु परंतु आज अलग उन्होंने बताया है हमारे प्रोग्राम को, और गज़ल की भी फरमाइश की है तो बिल्कुल दोस्त, गज़ल तो चलनी बनती ही है, लेकिन आप जानते हैं कि फरमाइश जो कर रहे हैं ना हमारे दोस्त, वो फरमाइश उनकी पूरी हो जाए 100%, इस बात का मैं दावा नहीं करती, प्रॉमिस नहीं करती। और आप जानते ही हैं कि जो हमारे अगले लिसनर हैं, उनका मैं जो मैसेज पढ़ने वाली हूँ अभी, आपको बहुत हंसी आने वाली है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक एक शब्द लिखकर भेजा है, हेलो की जगह एच लिखा है, मैडम की जगह एम लिखा है, और साथ में अपना नाम तो बिल्कुल नहीं लिखा है। तो भाई ऐसी भी क्या जल्दी कि इतना छोटा सा मैसेज करें। हाय रेखा सिस साहिबा जी, आदाब, प्रोग्राम का आगाज़ बहुत ही उम्दा, गीत हमने सनम को खत लिखा बहुत ही पसंद आया, कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन, फरहान, फारिया, ताहिरा लिखते हैं। मैसेजेस तो और भी हैं, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत सी गज़ल जहन में आ रही है, क्योंकि कभी कभी दोस्तों हम खुद चाहते हैं कि हम ज़्यादा समझदार ना रहें, कुछ देर के लिए हम ज़्यादा समझदार ना बने, कुछ देर के लिए बहुत होशियार बनने की कोशिश भी ना करें, कुछ देर के लिए, और होश भी गवा दें अपने कुछ देर के लिए।

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
1: दोस्तों, एक और मेरे पास मैसेज आया है, वो लिखते हैं पंकज अमरावती महाराष्ट्र से। शुभ रात्रि आरजी रेखा मैडम जी, वेलकम बैक टू यू शो मैडम जी। कार्यक्रम रंगे महफिल बहुत बढ़िया कार्यक्रम प्रस्तुत ती और आरजे मैडम जी, जो गीत आपने चलाया वो मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं। गीत हमने शर्म को खत लिखा, खत में लिखा बहुत बढ़िया गीत, कार्यक्रम की शुरुआत बहुत अच्छी की और इस फिल्म का नाम शक्ति है और उन्होंने जी हाँ गायिका का नाम भी पहचान लिया है, तो थैंक यू सो मच। अगर ये आपने सुनते ही जान लिया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर गूगल देवता की मदद ली है तो ठीक है, नॉलेज में तो आपके आ ही गया है। एक और मेरे पास मैसेज आया है, जी हाँ, मैं लातूर महाराष्ट्र से मनीषा, मगर दूसरी भी गजल बहुत ही मस्त है, मेरे साथ सुन रहे हैं काव्या मगर, शुभांगी मगर, आरती मगर, गंगा अंगद, दीपक उदय, तो थैंक यू सो मच। आप हमारे प्रोग्राम को सबके साथ सुन रहे हैं और आपको पसंद भी आ रहा है। एक और मैसेज ले लेते हैं, प्रकाश तिरसुनिया भानु प्रताप छत्तीसगढ़ से, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है और ये गज़ल तो बहुत ही अच्छी है जगजीत सिंह जी की आवाज़ में, सच में ऐसे गाने इस वक्त बहुत ही सुकून देते हैं। बिल्कुल दोस्तों, दिन भर की थकान कैसे गायब हो जाती है खूबसूरत संगीत के साथ पता ही नहीं चलता, और संगीत खास तौर से जब आपके दिल पर खास दस्तक दे तो उसकी बात अलग ही होती है ना। कितने अजीब हैं इस दुनिया के लोग, कितने अजीब हैं इस दुनिया के लोग, खिलौना छोड़कर जज्बातों से खेल जाते हैं।

जी हाँ दोस्तों, जब रात के सन्नाटे में इस तरीके के गीत गज़ल चलते हैं और ख़ास दस्तक देते हैं हमारे दिल पर, तो लगता है ना कि काश काश इसी तरह से ये समय चलता रहे, बस चलता रहे और हम उसे इंजॉय करते रहें। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी। खैर, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। एक और मेरे पास प्यारा सा मैसेज आया है। हाय आरजे आरसी जी, गुड इवनिंग। जयंत लिखते हैं पटना से। एक और मेरे पास मैसेज, विवाह गोवा श्याम सुंदर जी का, तो उन्होंने भी एक फरमाइश कर डाली है। तो देखो दोस्तों, ये तो मैं कई बार कहती हूँ कि ये फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है, फिर भी

कोशिश कर सकी तो कोशिश करके देखूंगी। एक और मेरे पास मैसेज आया है, ये आया है पंकज अमरावती महाराष्ट्र से। शुभ रात्रि आरजे रेखा मैडम जी, कार्यक्रम रंगे महफिल आपका हम सब सुन रहे हैं। कितने अजीब हैं इस दुनिया के लोग, खिलौने छोड़कर जज्बातों से खेल

0: छोटा करके लिखें, लेकिन इतना भी छोटा नहीं कि आप अपना नाम और जिस जगह से भेज रहे हैं उस जगह का नाम ही लिखना भूल जाएं। तो भाई ये तो गलत बात है, अपना नाम ज़रूर लिखकर भेजिए, और हो सके तो जिस जगह से आप लिख रहे हैं उस जगह का नाम भी ज़रूर मेंशन कीजिए। बस कहने को तो सिर्फ इतना ही कहूँगी कि जब भी आप अपना पसंदीदा प्रोग्राम सुनें तो बस एक मुस्कुराहट अपने होठों पर ज़रूर ले आएं। ये ना देखें कि कोई आपको देख रहा है या नहीं देख रहा है, बस मुस्कुराइए, क्योंकि कभी कभी अपने लिए, खुद के लिए मुस्कुराना भी बहुत ज़रूरी होता है। यूँ तो शब्दों को लंबा करना हर कोई जानता है, लेकिन कम शब्दों में अपनी बात को कहना कोई कोई जानता है, और जिसने ये हुनर हासिल कर लिया, बस समझ लीजिए वो अपने आप में एक कामयाब इंसान हो गया। और इस बात की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि कम शब्दों में दूसरों को अपनी बात को समझाया जा सके और कम शब्दों में लिखकर दूसरों को पढ़वाया जा सके। ये बात भी ज़रूरी नहीं है कि कम शब्दों में जो अपनी बात को कहते हैं वो बेहद इंटेलिजेंट होते हैं, ज़्यादा शब्दों वाले भी इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि मैं इस बात को जानती हूँ कि कुछ लोग इस बात को सुन के नाराज़ होने वाले हैं और कुछ गदगद होने वाले हैं। तो भाई जो अपनी बात को समझा दे दूसरे इंसान को, चाहे कम शब्दों में या फिर ज़्यादा शब्दों में, वो इंसान समझदार इंसान है। फिलहाल एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, फिर लौटते हैं आपके साथ, आपके पास। बने रहिए हमारे साथ।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
3: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली OG कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: वेलकम बैक दोस्तों। और एक हमारे पास मैसेज आया है, मुझे समझ में नहीं आया इस का मतलब कि मैम हम आपके प्रोग्राम हमेशा सुनते हैं लेकिन किंतु परंतु कभी कभी दिल इतना उदास होता है कि समझ में नहीं आता हम किससे बात करें और किससे नहीं। तो दोस्त जिससे बात करना आपको पसंद हो वो उससे बात करनी चाहिए, और अगर किसी से आपको बात करना पसंद ही नहीं है तो फिर आपको अपना मनपसंद सॉन्ग संगीत या फिर जो भी आपको खेलना पसंद है

खेलिए, डांस करना पसंद है तो डांस करिए, लेकिन इतनी उदासी भरी जो लाइनें आपने लिखी है ना, वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, और बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा मुझे कि आप भी इतनी उदासी भरे जी हाँ, इतनी उदासी भरे शब्दों का इस्तेमाल करें। एक और मेरे पास मैसेज आया है, मैं अंगद मगर लातूर महाराष्ट्र से आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ और प्रोग्राम अच्छा लग रहा है और मैं पहली बार मैसेज कर रहा हूँ। तो देखिए, आपने पहली बार मैसेज किया और पहली बार ही आपका मैसेज ऑन एयर हो गया। एक और मेरे पास मैसेज आया, इस छोटे से कस्बे में रेडियो सुनने का मज़ा ही अलग है, फिर गंगा का किनारा और इतना उम्दा गीत और गज़लें सुनकर दिल को बहुत सुकून मिलता है जी। फारूक अली खान लिखते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, दिल को सुकून कभी भी कैसे भी कहीं भी मिले, बस सुकून मिलना चाहिए। एक और मेरे पास मैसेज आया है, अब इन्होंने मैसेज में लिखा है, रंगे महफिल में आपको प्यार भरा नमस्कार आदाब अर्ज है, गुन्नौर से आदिल कमर तस्दीक अली मुजफ्फर अली, शुक्रिया धन्यवाद आपका, तो थैंक यू सो मच। एक हमारे लिसनर हैं, उन्होंने दिल एक मंदिर से एक सॉन्ग की फरमाइश कर दी है, तो दोस्त ये तो बात सही है कि आपने जो पैगाम मुझ तक भेजा है वो ठीक है, लेकिन मैं बार बार यही कहूँगी कि ये हमारा फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है, और हमारे फरमाइशी प्रोग्राम दिन में होते हैं, तो वहाँ पर अगर आप चाहें तो अपनी फरमाइश भेज सकते हैं। यूँ तो शब्दों को लबों पर लाने का काम हर इंसान जानता है, ध्यान से सुनिएगा, यूँ तो शब्दों को लबों पर लाने का काम हर इंसान जानता है, फर्क सिर्फ इतना सा है कि कोई इन शब्दों को बिना किसी एहसास के सीधे सीधे बोल देता है, और कोई इन्हीं शब्दों में प्यार की चाशनी की मिठास मिलाकर और अपने दिल को खूबसूरत सा एहसास देकर, जी हाँ, उन सभी सांचों में ढालकर सबके सामने पेश कर देता है या अपनी बात को रख देता है। शब्द तो अनमोल हो ही जाते हैं, साथ ही आपकी बातों का वजन भी कई गुना बढ़ जाता है। तय तो सिर्फ आपको ही करना है कि किसी का दिल तोड़ना है या फिर दिल से दिल को जोड़ना है।

जी हाँ दोस्त, जिन्होंने अपना नाम नहीं लिखा लेकिन वो इतने ज़्यादा गम में डूबे हुए हैं और उन्हें लगता है शायद कि उनकी ज़िंदगी में ही सबसे ज़्यादा गम है। मैं ये दोस्त ये नहीं कहूँगी कि आपने ऐसा क्यों लिखा, नहीं लिखना चाहिए था। ठीक है, बहुत अच्छा किया अपनी दिल की बात को आपने हमसे शेयर किया, लेकिन देखिए ये गज़ल मैंने आप ही के लिए चलाई कि आखिर इंसान ऐसा कोई है जिसे कोई गम ना हो। अगर कोई ऐसा हो तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप मुझे सिर्फ और सिर्फ उसका नाम बताइए, अगर आसपास है तो ढूंढ कर बताइए। मैं वादा करती हूँ आपसे कि ऐसा कोई हो ही नहीं सकता है कि किसी को ज़िंदगी में कभी कोई भी गम ना सताए या फिर किसी गम ने उसको छुआ ना हो। एक हमारे लिसनर हैं और वो लिखते हैं, नमस्कार रेखा जी, मैं आपका कार्यक्रम रंगे महफिल सुन रहा हूँ और सच कहूँ तो आपकी आवाज़, प्रस्तुति और गज़लों का चयन दिल को छू रहा है। आपकी पेश की हुई गज़लें सीधे सीधे दिल में उतर रही हैं और पुराने सुनहरे दौर की यादें याद दिला रही हैं। दिल से धन्यवाद इतना सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए। इसी तरह अपनी आवाज़ और गज़लों से श्रोताओं के दिलों को सजाती रहिए। अमरेंद्र सिंह इंदौर से लिखते हैं, तो थैंक यू सो मच। एक और मेरे पास मैसेज आया है भाई, उन्होंने जो लिखा है ना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लिखा है। वो लिखते हैं कि ऐसा कोई भी दिन नहीं जिस दिन तुम्हारे

याद ना है भाई, अब ये किसके लिए लिखा है ये तो आपने मुझे बताया ही नहीं। एक और मेरे पास मैसेज है, चलिए उसको भी पढ़ लेते हैं। कोई किसी की जुदाई में नहीं मरता, पर रब किसी को किसी से यूं ही जुदा भी नहीं कर सकता। राजेश भल्ला एडवोकेट कंकड़ खेड़ा से हमें लिखते हैं। एक और मैसेज चलिए पढ़ ही लेते हैं। इन्होंने भी अपना नाम नहीं लिखा है। देखिए ऐसा गजब तो ना करें कि आपके इस दोस्त को, जिसको कभी गुस्सा नहीं आता है, उसको गुस्सा आ जाए। और जिन्होंने ये मैसेज भेजा था, जो मैंने अभी अभी पढ़ा, इन्होंने भी अपना नाम नहीं लिखा है। तो भाई प्लीज़ अपना नाम लिखकर तो मुझे ज़रूर भेजा करिए, कम से कम मुझे पता तो चले कि ये बातें, ये शब्द, ये लाइनें आखिर हमारे किस लिसनर ने लिखी हैं। सुनते रहिए आकाशवाणी का रेनबो चैनल 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिल्ली और NCR में और पूरे भारत में हम जुड़े हैं आपसे अलग अलग जगहों पर, अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पर। और पूरे भारत में ही नहीं बल्कि अब आप हमें कभी भी कहीं भी, यानी कि विदेशों में भी सुन सकते हैं ऐप के जरिए। तो सुनते रहिए आकाशवाणी का रेनबो चैनल, जिसकी आवाज पहुंचती है दिल से दिल तक। एक और प्यारा सा गीत आप सबके लिए है।

जी हाँ, हमारे पास मैसेज आया है और उन्होंने भी हमारे प्रोग्राम की काफ़ी तारीफ़ की है और लिखा है, आरजे जब रेनबो पर बात करते हैं तो श्रोताओं को बहुत अच्छा लगता है, वरना सिर्फ गाने प्ले करने का क्या मतलब। बिल्कुल दोस्त, गाने प्ले सिर्फ किए जाए तो हाँ फिर अच्छा कम लगता है, अगर बातचीत के ज़रिए संगीत सुना जाए तो उसमें चार चांद लग जाते हैं और उससे सुनने का मज़ा अलग होता है। बिल्कुल सही कहा है आपने। एक और मेरे आगे भी लिखा है मैंने आगे पढ़ा अभी तो मुझे पढ़ने के बाद हंसी खुद ब खुद आ गई। आपकी हंसी तो अप्रतिम, बहुत लाजवाब है लेकिन आमने सामने देखने को कितना आमने सामने देखा जाए तो कितना मज़ा आता होगा ना भाई। आप कई बार दोस्त ऐसा भी होता है कि हम जब कोई चीज़ सुनते हैं ना तो वो हमें ज़्यादा अच्छी लगती है, और अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि सामने आने पर भी उस इंसान को उसकी आवाज़ जो सुन रहे हैं, ऑन ईयर सुन रहे हैं, उसको आमने सामने बैठकर भी वही आवाज़ बहुत खूबसूरत लगे। एक और मेरे पास मैसेज आया है, चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। आरजे आरसी जी उन्होंने भाई ठीक है, आपने मेरे प्रोग्राम की बहुत तारीफ़ की है लेकिन जो शुरू में फर्स्ट लाइन लिखी है ना वो क्यों लिखी है मुझे तो ये समझ में नहीं आया। और हाँ, अगर मेरे पास वक्त होता तो आपकी समस्या को सुलझाने की मैं ज़रूर कोशिश करती। दोस्त ये अननोन लिखा है और बिहार से मेरे पास मैसेज आया है, तो कोशिश अगली बार कर लूँगी क्योंकि टिक टिक करती घड़ी ना काफ़ी कुछ कह रही है। हमारे पास वक्त बहुत कम है, बातें और गीत गज़लों की जो लाइन है वो बहुत लंबी है। और आगे एक और मेरे पास मैसेज है प्रकाश तिरसुनिया का, भानु प्रताप छत्तीसगढ़ से। आज सभी श्रोताओं के भेजे गए मैसेज को आप बहुत ही ध्यान से पढ़ रही हैं, कई बार हम देर रात तक सुनते हैं पर फिर भी मैसेज शामिल नहीं किए जाते हैं, कभी भी प्रोग्राम के अंत तक एक दो मैसेज पढ़ के प्रोग्राम समाप्त हो जाता है, लेकिन आज आप सभी मैसेज ले रही हैं। तो दोस्त मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि आप सभी के मैसेजेस लूँ, आप सभी की बातों को शेयर करूँ। पंकज अमरावती महाराष्ट्र से लिखते हैं, शुभ रात्रि रेखा मैडम जी, गीत फिर छिड़ी रात फूलों की बहुत ही अच्छा लगा और उन्होंने गायक गायिका के नाम भी पहचान लिए हैं। तो चलिए दोस्तों, वैसे तो हम हंसते हैं मुस्कुराते हैं, कई बार बहुत हंसते हैं मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर की बात कोई जान पाता है या नहीं ये हम खुद नहीं पहचानते। कुछ लोग होते हैं हम में से जो आपकी हंसी के पीछे का दर्द पहचान लेते हैं, कुछ लोग हंसते हंसते बस यही कह देते हैं कि आपकी जो हंसने का तरीका

0: है वो बहुत अच्छा है, और उस पर हम यही कहेंगे कि हम हंसते तो हैं लेकिन सिर्फ दूसरों को हंसाने के लिए, वरना जख्म तो इतने हैं कि ठीक से सोया तो क्या, रोया भी नहीं जाता। फिर भी हम मस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, बस इसी बात का हमें अपने आप पर गर्व रहता है। एक और मेरे पास मैसेज आया है, लेकिन इन्होंने भी अपना नाम नहीं लिखा है, तो चलिए इसी बात पर हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, फिर लौटते हैं आपके साथ, आपके पास। बने रहिए हमारे साथ।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
0: वेलकम बैक दोस्तों, और एक और मेरे पास मैसेज आया है। जी हाँ, ये भी अमरावती महाराष्ट्र से ही है, और उन्हें भी हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है, लेकिन उन्होंने देखिए अपना नाम नहीं लिखा है। एक और मैसेज मेरे पास, चलिए एक और मैसेज, मतलब उन्होंने ही लिखा है कि आपकी जैसी एक आरजे पूजा रेनबो मुंबई पर थी, उनका प्रोग्राम भी पूरा हंसी में होता था। 6 साल प्रोग्राम सुना, लेकिन 1 साल हुआ रेनबो पर से उन्हें गायब हुए, और आज आगे की लाइन जो है ना, आपने अपने आप ही जोड़ दी। भाई कोई भी कारण हो सकता है उनका रेनबो पर ना आने का, इस पर अंदाजा लगाना तो भाई बिल्कुल गलत होगा। तो आखिर टिक टिक करती घड़ी हमें बहुत कुछ कह रही है, और कह रही है कि जाने के लिए आना और आने के लिए जाना बहुत ज़रूरी है। फिर किसी मोड़ पर फिर से मुलाकात होगी, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं। और फिलहाल अपने दोस्त आरजी आरसी को दीजिए इजाज़त, शब्बा खैर। और चलते चलते एक और प्यारी सी गजल कह लीजिए, गीत कह लीजिए, लेकिन दिल के आसपास रहने वाले शब्द ये जरूर कहेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारत और इटली ने कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
0: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला पदक से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि ये सम्मान देश के करोड़ों किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को समर्पित है। सुश्री सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान भारत के किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य कर्मियों के योगदान की पहचान है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। साइप्रस गणराज्य के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोदुलिदिस उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर मुंबई पहुंचे। मुंबई हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। साइप्रस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच शुक्रवार को बैठक होगी। दोनों नेता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति जैसे विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 147 रन बनाए थे। 148 रन के लक्ष्य के जवाब में ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता नाइट राइडर्स ने 16 ओवर में 5 विकेट पर 130 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आप जुड़ी हुई हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। बहुत बहुत स्वागत है हमारे सुनने वाले सभी श्रोताओं का। तो यूं ही जुड़े रहिए और हमारे इस प्रोग्राम यानी जीरो आवर्स के साथ, और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: तराने गाने नए पुराने नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: कोयल सी तेरी बोली
2: हाय
1: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए।

0: मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तो मैं सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
5: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली OG कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। भारत और इटली ने कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री मोदी को एग्रीकोला पदक से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि ये सम्मान देश के करोड़ों किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को समर्पित है। सुश्री सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान भारत के किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े कर्मियों के योगदान की पहचान है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की घोषणा की है। राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने आयोग के संचालन के लिए 5 सदस्यीय पैनल को मंजूरी दी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश राम अवतार सिंह को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये आयोग त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए उचित कानूनी ढांचे का अध्ययन, मूल्यांकन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गठित किया गया है। अमरीकी सेना ने कहा कि उसने ओमान की खाड़ी में ईरानी झंडे वाले एक वाणिज्य तेल टैंकर पर चढ़कर उसकी जांच की। इस जहाज पर अमरीकी प्रतिबंधों के उल्लंघन का संदेह था। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि एमटी सेलेस्टियल सी नामक टैंकर की तलाशी ली गई और उसका मार्ग बदल दिया गया। ट्रंप प्रशासन द्वारा

ईरानी जहाज पर नाकेबंदी शुरू किए जाने के बाद ये लगभग पांचवा पोत है जिस पर इस तरह की कार्रवाई की गई है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 147 रन बनाए। आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से, मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप जुड़ी हुई हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। समय हो चला है हमारे अगले प्रोग्राम सुहानी रात का, तो यूं ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। भारत और इटली ने कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए हैं। इन समझौतों पर रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, मछली पालकों, पशुपालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री मोदी को एग्रीकोला पदक से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि ये सम्मान देश के करोड़ों किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को समर्पित है। सुश्री सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्री गोयल ने कहा कि यह सम्मान भारत के किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य कर्मियों के योगदान की पहचान है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की घोषणा की। राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने आयोग के संचालन के लिए 5 सदस्यीय पैनल को मंजूरी दी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश राम अवतार सिंह को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये आयोग त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए उचित कानूनी ढांचे का अध्ययन और मूल्यांकन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गठित किया गया है। अमेरिका की सेना ने कहा है कि उसने ओमान की खाड़ी में ईरानी झंडे वाले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर पर चढ़कर उसकी जांच की। इस जहाज पर अमेरिकी प्रतिबंधों के उल्लंघन का संदेह था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एमटी सेलेस्टियल सी नामक टैंकर की तलाशी ली गई और उसका मार्ग बदल दिया गया। ट्रंप प्रशासन द्वारा ईरानी जहाज पर नाकेबंदी शुरू किए जाने के बाद ये लगभग 5वां पोत है जिस पर इस तरह की कार्रवाई की गई है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 147 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 19वें ओवर में जीत हासिल कर ली। मनीष पांडे को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। समय हो चला है हमारे अगले प्रोग्राम भुलाई ना बनेगा, तो यूं ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बोनक में, जिन्हें यकीनन भुलाए नहीं भूला जाएगा। जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
0: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
0: म्यूजिक मस्ती।
5: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ, तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। भारत और इटली ने कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए हैं। इन समझौतों पर रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास केंद्र पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला लिया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री मोदी को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि ये सम्मान देश के करोड़ों किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को समर्पित है। सुश्री सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज पुनः मतदान होगा। दो निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने मंगलवार को घोषणा की कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि नाम वापस लेने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, इसलिए औपचारिक रूप से उनका नाम मतपत्र पर बना हुआ है। भाजपा के उम्मीदवार देवांशु पांडा हैं। कांग्रेस ने अब्दुल रजाक मोल्ला को मैदान में उतारा है, जबकि CPIM ने शंभुनाथ कुर्मी को उम्मीदवार बनाया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की घोषणा की है। राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने आयोग के संचालन के लिए 5 सदस्यीय पैनल को मंजूरी दी है। अमरीकी सेना ने कहा है कि उसने ओमान की खाड़ी में ईरानी झंडे वाले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर पर चढ़कर उसकी जांच की। इस जहाज पर अमरीकी प्रतिबंधों के उल्लंघन का संदेह था। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि MT सेलेस्टियल सी नामक टैंकर की तलाशी ली गई और उसका मार्ग बदल दिया गया। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। मनीष पांडे को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
6: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ, तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

ये लगता है कि यहाँ

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। भारत और इटली ने कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए हैं। इन समझौतों पर रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया है। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार के 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर

0: तेजी से बढ़ रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री मोदी को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि ये सम्मान देश के करोड़ों किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को समर्पित है। सुश्री सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज पुनः मतदान होगा। दो निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने मंगलवार को घोषणा की कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि नाम वापस लेने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, इसलिए औपचारिक रूप से उनका नाम मतपत्र पर बना हुआ है। भाजपा के उम्मीदवार तिबांशु पांडा हैं। कांग्रेस ने अब्दुल रज्जाक मोल्ला को मैदान में उतारा है, जबकि सीपीआईएम ने शंभुनाथ कुर्मी को उम्मीदवार बनाया है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के बीच अमरीकी नौसेना ने ओमान की खाड़ी में ईरानी झंडे वाले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर को रोककर उसका मार्ग बदल दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के अनुसार एमटी सेलेस्टियल सी नामक टैंकर की तलाशी ली गई। इस पर ईरानी बंदरगाह की ओर जाने का संदेह था। अमेरिका ने इस साल अप्रैल में ईरानी जहाजों पर नाकाबंदी लागू की थी। इसके बाद से अब तक 91 वाणिज्यिक जहाजों का मार्ग बदला जा चुका है, जबकि 4 जहाजों को रोका गया है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 147 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 19वें ओवर में जीत हासिल कर ली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन

0: के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
0: रेनबो डेस्टिनेशन
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
0: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
1: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
0: म्यूजिक मस्ती।

और कास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

यद्खिल ज्ञान प्रकाशोत्सवे यन्निर्वाण गमोत्सवे जिनपते पूजाद्भुतं तद्भवैः संगीतस्तुतिमंगलैः प्रसरता।